FM बैंड 103.7 MHz पर ये FM शिमला है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: अब समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से

0: 31 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of

0: मस्तक जिनके चंद्रमा जटा से गंगा प्रकटाए, पुण्य फल मिले उसको जो शिव पर जल चढ़ाए। आप सुन रहे हैं FM शिमला पर हिमांजलि, भानुप्रिया के साथ सुनते रहिए।
1: समय का

ना मिले प्रभु महलों में, ना मिले दरबार में, खोजना है तो खोजो इन्हें हर प्राणी के श्वास में। आप सुन रहे हैं हिमाचली FM शिमला पर, सुनते रहिए यूं ही।

प्रभु कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे इसी कामना के साथ आज फिलहाल हिमांजलि में इतना ही। सुबह के 6:40 हुए हैं, ये वक्त है मानस गान का। आवाज़ लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ति की है और संगीत है सतीश भाटिया का।

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे देशकान। आइए करते हैं खुद को अपडेट न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरी कला में कल उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 टेस्ला MRI और अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले में 250 से अधिक आबादी वाले सड़क से वंचित सभी गांवों के लिए सड़क की DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डलहौजी में एक बैठक में उन्होंने जिले में सड़क परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया। 1975 के आपातकाल की याद में कल संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिमला में आयोजित प्रदर्शनी में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हुए हमले, लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और ऐतिहासिक दस्तावेजों व चित्रों को प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन व नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आगामी 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा हमीरपुर जिले के बिजड़ी में आयोजित 3 दिवसीय मल्टी मीडिया प्रदर्शनी संपन्न हो गई। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन व जन कल्याण के 12 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी रामजी किए जाने और योजना में किए गए बदलाव पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से हिमाचल प्रदेश पर प्रतिवर्ष 164 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत अनुसूचित H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। ये थी अब तक की FM न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण

0: जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 7:05 हुए हैं। अब आइए सुने चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकुम शर्मा की है।
2: एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार नगर में एक अच्छे संत आए। राजा उनके पास गया और संतान के लिए प्रार्थना की। संत ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान लिखी नहीं है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा उदास मन से वहां से लौट गया। रास्ते में उन्हीं संत का एक शिष्य मिल गया। शिष्य ने पूछ लिया, महाराज, आप यहां कैसे आए? राजा ने कहा कि मैं संतान की कामना से आया था, पर काम हुआ नहीं।

0: शिष्य ने कह दिया कि चिंता मत करो, आपकी संतान हो जाएगी। राजा प्रसन्न होकर महल में लौट आया। इधर गुरुजी को मालूम हुआ तो वे शिष्य पर बड़े नाराज हुए कि राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं था, तुमने संतान होने की बात क्यों कह दी? शिष्य बोला कि क्या करूं, मुंह से निकल गया। गुरुजी ने कहा कि अपने वचन के कारण अब तुम्ही को राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ समय बाद राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था कि वो मुंह से कुछ बोलता नहीं था। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने घोषणा कर दी, जो व्यक्ति राजकुमार से बुलवाएगा उसको 1,00,000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। अनेक व्यक्ति आए, उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, पर कोई भी राजकुमार से बुलवा नहीं सका। समय बीतता गया, राजकुमार कुछ बड़ा हो गया। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को वन में घुमाने ले गए। वहां एक शिकारी बैठा था और पक्षी को खोज रहा था कि कोई पक्षी दिखाई दे तो उसको मारो। इतने में एक पेड़ पर बैठा पक्षी बोल पड़ा। शिकारी की दृष्टि उस पक्षी की तरफ गई और उसने पक्षी को मार गिराया। ये देखते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा, बोला तो मरा। ये सुनते ही राजकुमार के साथ आए आदमी बड़े हर्षित हो गए कि आज तो राजकुमार बोल गया। वे राजा के पास गए और उसको समाचार दिया कि आज वन में राजकुमार बोल पड़ा। राजा ने उनसे कहा कि मेरे सामने बुलवाओ, तब मैं मानूंगा। उन आदमियों ने बहुत प्रयत्न किया, पर राजकुमार कुछ बोला नहीं। राजा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि साफ साफ कहो बात क्या है। अब राजकुमार बोला, महाराज मैं वही साधु हूं जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके प्रारब्ध में संतान नहीं थी, पर मैं बोल गया इसलिए मुझे आपके घर जन्म लेना पड़ा। अगर मैं ना बोलता तो मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़ता। पक्षी भी बोला, तभी शिकारी के द्वारा मारा गया। इन आदमियों ने आपको मेरे बोलने का समाचार दिया तो परिणाम में फांसी लगने लगी। ये सब बोलने का ही परिणाम है, इसलिए मेरे मुंह से निकला बोला तो मरा। अब मैं भी जाता हूं क्योंकि मैं बोल गया। ऐसा कहकर राजकुमार मर गया। संतों ने ठीक ही कहा है, जन हरिया संसार में बहु बोलियां बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमिरिए जो जीव चाहे सुख।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। अब आइए सुने गांधी चर्चा।

नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आप सुनेंगे चौथे भाग का 32वां अध्याय। शीर्षक है भले बुरे का मिश्रण। टॉलस्टॉय आश्रम में मिस्टर किलन बेक ने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया। उनके उठाने से पहले मैंने उस प्रश्न पर विचार नहीं किया था। आश्रम में कुछ लड़के बहुत उद्यमी थे और कुछ दुष्ट स्वभाव के थे, कुछ आवारा थे। उन्हीं के साथ मेरे 3 लड़के थे। उस तरह पले हुए दूसरे बालक भी थे, लेकिन मिस्टर किलन बेक का ध्यान तो इस ओर ही था कि वे आवारा युवक और मेरे लड़के एक साथ कैसे रह सकते हैं। एक दिन वे बोल उठे, आपका ये तरीका मुझे जरा भी नहीं जचता। इन लड़कों के साथ आप अपने लड़कों को रखें तो उसका एक ही परिणाम आ सकता है, इन आवारा लड़कों की छूत लगेगी। इससे वे बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। मुझे इस समय तो याद नहीं है

कि मैं क्षण भर सोच में पड़ा था या नहीं, पर अपना जवाब मुझे याद है। मैंने कहा था, अपने लड़कों और इन आवारा लड़कों के बीच मैं भेद कैसे कर सकता हूँ? इस समय तो मैं दोनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हूँ। ये नौजवान मेरे बुलाए यहाँ आए हैं। यदि मैं इन्हें पैसे दे दूँ तो आज ही ये जोहानिसबर्ग जाकर वहाँ पहले की तरह फिर रहने लग जाएं। यदि ये और इनके माता पिता ये मानते हों कि यहाँ आकर इन्होंने मुझ पर मेहरबानी की है तो इसमें आश्चर्य नहीं। यहाँ आने से इन्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये तो आप और मैं दोनों देख रहे हैं। पर मेरा धर्म स्पष्ट है, मुझे इन्हें यहीं रखना चाहिए। अतएव मेरे लड़के भी इनके साथ रहेंगे। इसके सिवा क्या मैं आज से अपने लड़कों को ये भेदभाव सिखाऊं कि वे दूसरे लड़कों की अपेक्षा ऊंचे हैं? उनके दिमाग में इस तरह के विचार को ठूंसना ही उन्हें गलत रास्ते ले जाना जैसा है। आज की स्थिति में रहने से वे गढ़े जाएंगे, अपने आप सारा सार की परीक्षा करने लगेंगे। हम ये क्यों ना माने कि यदि मेरे लड़कों में सचमुच कोई गुण है तो उल्टे उन्हीं की छूत उनके साथियों को लगेगी। सो कुछ भी हो, पर मुझे तो उन्हें यहीं रखना होगा, और यदि ऐसा करने में कोई खतरा भी हो तो उसे उठाना होगा। मिस्टर किलनबैक ने सिर हिलाया। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रयोग का परिणाम बुरा निकला। मैं नहीं मानता कि उससे मेरे लड़कों का कोई नुकसान हुआ, उल्टे मैं देख सका कि उन्हें लाभ हुआ है। उनमें बड़प्पन का कोई अंश रहा हो तो वो पूरी तरह निकल गया। वे सबके साथ घुलना मिलना सीखे, उनकी कसौटी हुई। इस और ऐसे दूसरे अनुभवों से मेरा ये विचार बना है कि माता पिता की उचित देखरेख हो तो भले और बुरे लड़कों के साथ रहने और पढ़ने से भलों की कोई हानि नहीं होती। ऐसा कोई नियम तो है ही नहीं कि अपने लड़कों को तिजोरी में बंद रखने से वे शुद्ध रहते हैं और बाहर निकलने से भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये सच है कि जहाँ अनेक प्रकार के बालक और बालिकाएं एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ माता पिता की और शिक्षकों की कसौटी होती है, उन्हें सावधान रहना पड़ता है।

साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में आप सुन रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आपने चौथे भाग का 32वां अध्याय सुना, शीर्षक था भले बुरे का मिश्रण। और आइए अब सुनते हैं गांधी जी का प्रिय राम।

0: एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा।
1: सुरीला सफर संगीत का, साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो, क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हुए हैं, ये वक्त है आपके अपने जाने पहचाने प्रोग्राम का जो है गुड मॉर्निंग शिमला। मैं हूं आपके साथ आपके हमसफर भानुप्रिया वर्मा और मेरे साथ है खजाना बहुत सारे एंटरटेनिंग म्यूजिकल नंबर्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जैसे कि आप सभी को मालूम है एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो आज का पॉजिटिव थॉट दोस्तों सिर्फ ये है कि जिसने भी संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। यानी आपकी एक सोच जो है आपके पूरे जीवन का निर्माण करती है, तो इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। सारी चीज़ें आप नहीं बदल सकते हैं, और अगर कुछ आपके हाथ में है तो वो है सिर्फ आपका खुद का विचार, सिर्फ आपका अपने आप को बदलना। तो अगर आप खुद को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आप ला सकते हैं, तभी अपनी सोच के साथ। फिलहाल आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल नंबर आपके लिए, यहाँ से प्ले कर रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
4: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
5: तो जी, गुड मॉर्निंग। शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज

पर भानुप्रिया वर्मा के साथ में। तो आखिरकार आज की जो तारीख है यानी 26 जून वो अपने आप में खास क्यों है, बताऊंगी आपको जल्दी इस नेक्स्ट म्यूजिकल नंबर के बाद।

गुड मॉर्निंग शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मैंने आपको बताया था कि आज की जो तारीख है वो अपने आप में खास क्यों है। वैसे अगर आप ये 2026 की बात करते हैं तो देखिए आज की तारीख वैसे ही खास है क्योंकि आज है 26 जून 2026। 26/6/26। खैर FM शिमला पर हम अभी बात करेंगे कि आखिरकार 26 जून जो है इतिहास के पन्नों में ख़ास तौर पर दर्ज है तो है क्यों। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 26 जून को। और इसका उद्देश्य होता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ समाज में जागरूकता लाना। इसके अलावा अगर हम 1975 की बात करें तो इसे भारतीय राजनीति के सबसे काले अध्याय में गिना जाता है क्योंकि इसी दिन देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास, और जैसे कि 1949 में बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। अगर हम ईयर 2000 की बात करते हैं तो बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। 26 जून को रोमानिया में नेशनल फ्लैग डे भी मनाया जाता है। और 1498 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया था जिसे चीन के राजा ने पेटेंट करवाया था। वेल, सोचिए आप, अगर टूथब्रश ना होता तो फिर आखिरकार हमारे दांतों की देखरेख जो है वो भला कैसे होती। और भी बात करूँगी मैं ऐसे ही कुछ खास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की, आपने कहीं नहीं जाना है, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर, और हम बात कर रहे थे कि आखिरकार आपके लिए और भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन हैं आज के दिन को लेकर के, कि आखिरकार 26 जून का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में क्यों दर्ज है। तो अगर मैं आज की बात करूं तो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था 26 जून के दिन, एक खास जो इसे बनाता है आज के दिन को, इंटरनेशनल लेवल पर जो है आप देखा जाए पीस को मेंटेन करने के लिए, सौहार्द सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में 26 जून की जो तिथि है उसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। 1945 में आज के दिन इस ऐतिहासिक वैश्विक संस्था की बुनियादी घोषणा पत्र को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिली थी और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था, लेकिन इसके घोषणा पत्र को उसी वर्ष 26 जून को स्वीकार कर लिया गया था और इस पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर भी किए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1714 की, तो स्पेन और नीदरलैंड ने व्यापार और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1843 में हांगकांग को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया था। फिलहाल ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से आज की डेट, या मैं कहूँ आज का दिन, अपने आप में खास बन जाता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि हर दिन हर शख्स के ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि हर दिन उसे कुछ अधूरे काम करने का मौका मिलता है, उसे अपने ख्वाब सजाने का मौका मिलता है और सुनने का मौका मिलता है FM शिमला 103.7 MHz पर। सो सुनते रहिए।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
3: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है ये गुड मॉर्निंग शिमला। तो जी, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपकी सुबह को जो है खास बनाया जाए, वो भी एंटरटेनिंग म्यूजिकल नंबर्स और कुछ खास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के साथ। बात हो गुड मॉर्निंग शिमला की, और इस प्रोग्राम में हम ना बताएं आपको मौसम का हाल, तो जी ऐसा तो बनता नहीं है। फिलहाल आंधी तूफान का येलो अलर्ट है। पिछले कल शिमला में शुभ्रा

योग या फिर मैं कहूँ कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम ने थोड़ी करवट ली है, बारिश भी हुई है जिससे जो है गर्मी से लोगों को निजात मिली है। वहीं पर अगर हम मौसम विभाग के अपडेट्स को देखें तो 29 जून तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो एक्टिव रहेंगी, जिससे कि मौसम के मिजाज में बदलाव आप देख पाएंगे, यानी कि हाय हाय गर्मी आपको नहीं करनी पड़ेगी। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर, सुनते रहिए यूं ही।

0: कल आज प्रोग्राम में इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चला है खुद को अपडेट करने का एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरीकला में कल उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 टेस्ला, MRI और अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले में 250 से अधिक आबादी वाले सड़क से वंचित सभी गांवों के लिए सड़क की DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डलहौजी में एक बैठक में उन्होंने जिले में सड़क परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आगामी 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला आज से आरंभ हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ आज शोभा यात्रा के साथ होगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे तथा दोपहर 2 बजे माता की डोली का स्वागत कर शोभा यात्रा में भाग लेंगे। प्रदेश में एंटी चिट्टा डे के रूप में आज विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नशे विशेषकर चिट्टे के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज प्रदेश सहित देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है। मुहर्रम का पर्व कर्बला के शहीदों की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर ताजिए निकाल कर लोग शहीदों को याद करते हैं। शिमला जिला प्रशासन ने आगामी सेब सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने संबंध में वर्चुअल बैठक कर संबंधित अधिकारियों से सेब सीजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में कल अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर खिलाड़ियों को चिट्टे के विरुद्ध शपथ दिलाई। ये थी अब तक की एफएम न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब समाचार सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही

0: ही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हुर्मुज जलडमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है।

0: सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world.

0: in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be a major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर. आइए करते हैं खुद को अपडेट एक बार फिर से न्यूज हेडलाइंस के साथ.
3: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरीकला में कल उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 टेस्ला, MRI और अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की जा रही हैं. सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला आज से आरंभ हो रहा है. 3 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ आज शोभा यात्रा के साथ होगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे तथा दोपहर 2 बजे माता की डोली का स्वागत कर शोभा यात्रा में भाग लेंगे. प्रदेश में एंटी चिट्टा डे के रूप में आज विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य नशे विशेषकर चिट्टे के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है. खाद्य व नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग ने आधार सर्वर डाउन की समस्या को देखते हुए अब डिपो धारकों को QR कोड के माध्यम से राशन वितरण करने के निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार ने LPG की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं. सरकार ने नॉन डोमेस्टिक पैक्ड LPG की सप्लाई पर लगी सेक्टोरल पाबंदियां हटा दी हैं. हालांकि आम जनता के इस्तेमाल में आने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के PhD प्रवेश के लिए काउंसलिंग और शोध प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए खेल कोटा के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस संबंध में सभी विभागों और संस्थानों को 15 जुलाई तक सभी आवेदन निदेशालय को भेजने के निर्देश जारी किए हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून को दोबारा आयोजित नीट यूजी 2026 के चारों सेट के प्रश्न पत्र और प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 28 जून तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. आज प्रदेश सहित देशभर में मुहर्रम मनाया जा रहा है. मुहर्रम का पर्व कर्बला के शहीदों की याद में मनाया जाता है. इस

0: अवसर पर ताजिए निकालकर लोग शहीदों को याद करते हैं। शिमला जिला प्रशासन ने आगामी सेब सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। उपायुक्त ने इस संबंध में वर्चुअल बैठक कर संबंधित अधिकारियों से सेब सीजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। ये थी अब तक की एफएम न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आइए आपको सुनवाते हैं हिमाचली लोक संगीत।

0: इसी के साथ फिलहाल हिमाचली संगीत का ये जो सिलसिला है यहीं पर थामते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

किक मूवी से आपने ये सॉन्ग इन्जॉय किया, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मरने वरने की क्या बातें करनी है, पॉजिटिव रहिए, नहीं मिला नहीं मिला, और जो मिल गया उसमें खुश रहिए। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, हम बात करते हैं आपकी अपनी, तो 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपको ये याद दिला दें हम कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं 9:30 पर मेल्स बेस्ड प्रोग्राम के ज़रिए, जिसमें आप शामिल होते हैं आपके मेल्स के साथ, और यहाँ से आपके लिए हम लाइव प्ले करते हैं आपका फेवरेट म्यूज़िक विथ योर मैसेजेस। खैर, FM शिमला पर मस्ती म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल अल्लाह हमारे यहाँ आ रहे हैं आपके लिए यारियाँ से।

93.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब जीनियस से आ रहा है तेरा फितूर। फील द सॉन्ग, फील द लिरिक्स।

ऑल राइट, आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल वक्त हो गया है आपको अपडेट करने का उन तमाम प्रोग्राम्स के साथ जो आज आप आकाशवाणी शिमला के मुख्य चैनल से सुन सकते हैं। 9:30 पर वक्त होगा सुबह शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरवेला का, जबकि रिमझिम प्रोग्राम आप सुन पाएंगे सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। 11:30 पर हमारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनिएगा उमंग, और इसके बाद महिला सम्मेलन का समय रहेगा 12:20 का। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम सैनिकों के लिए आज आप सुनिएगा हर रोज की तरह 1:10 से लेकर 2 बजे तक, जबकि सुनहरी किरणें आप सुन सकते हैं आज 2 बजे से 2:15 तक। हिमाचल के विभिन्न बोलियों के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 4:20 से, और शुरुआत होगी सिरमौरी कार्यक्रम के साथ 4:50 पर। वक्त होगा महास्वीक कार्यक्रम का। किन्नौरी कार्यक्रम आप सुनिएगा आज

शाम 5:20 पर, और फिर उसके अलावा वक्त होगा बिलासपुरी कार्यक्रम का 6:06 पर, और कुल्लवी कार्यक्रम आप सुनिएगा शाम 6:35 पर। कृषि जगत का समय रहता है शाम 7:10 का, जबकि रोजगार समाचार आपके लिए हम लाएंगे शाम 7:56 पर। 8:00 से लेकर 8:15 तक आज रात आप सुन पाएंगे धारा रे गीत और सुगम संगीत, सुनिएगा जरूर रात 8:30। सुरबहार आप सुन पाएंगे रात 10:30 पर। फिलहाल आज अभी इतना ही, और आप सुन रहे हैं FM शिमला, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मिनट तक आज रात आप सुन पाएंगे धारा रे गीत और सुगम संगीत, सुनिएगा जरूर रात 8:30। सुरबहार आप सुन पाएंगे रात 10:30 पर। फिलहाल आज अभी इतना ही, और आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी प्रसारित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटी सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय माँ शूलिनी मेला आज से होगा शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू करेंगे विधिवत शुभारंभ। चंबा जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए 551 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत करेगा और आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा आशुरा ए मुहर्रम। अब समाचार विस्तार से। सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय माँ शूलिनी मेला आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे कचहरी चौक पर माता की डोली का स्वागत करेंगे तथा शोभा यात्रा में भाग लेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: शूलिनी मेले की सबसे आकर्षक परंपरा माता शूलिनी की भव्य शोभा यात्रा है। इस दौरान माता की पालकी को विशेष रूप से सजाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। हजारों श्रद्धालु स्थानीय देवता वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और पारंपरिक नृत्य इस शोभा यात्रा को अद्भुत व दिव्य स्वरूप प्रदान करते हैं। पूरा सोलन नगर भक्तिमय वातावरण में रंग जाता है। मेले के पहले दिन माता शूलिनी की डोली पूरे सोलन शहर परिक्रमा करती है। इसके बाद डोली गंज बाजार स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचती है, जहां उनकी बहन विराजती है। माता शूलिनी पूरे 2 दिनों तक अपनी बहन के मंदिर में रुकती हैं। 3रे दिन की शाम को दोनों बहनों की विदाई प्रसंग होता है और माता शूलिनी वापस अपने मंदिर लौट जाती है। ये मेला 2 बहनों के प्यार और मिलन का प्रतीक है, जिसे पूरा सोलन शहर बड़े उल्लास के साथ मनाता है। पुराने समय में माँ शूलिनी मेला केवल 1 दिन के लिए अषाढ़ मास के 2रे रविवार को माता शूलिनी के मंदिर के समीप स्थित खेतों में आयोजित किया जाता था। समय के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ी और सोलन जिले के गठन के बाद इसे पर्यटन व सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए राष्ट्र स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। माता शूलिनी देवी को सोलन नगर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मान्यता है कि माता शूलिनी देवी के नाम पर ही इस नगर का नाम सोलन पड़ा। धार्मिक आयोजनों के साथ साथ मेले में सांस्कृतिक संध्याएं, लोक नृत्य, लोक संगीत, खेल प्रतियोगिताएं, कुश्ती, दंगल, हस्तशिल्प प्रदर्शनियां और स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। मेले का समापन 28 जून को होगा, जिसमें राज्यपाल कविंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।

0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। चंबा जिला में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले सड़क सुविधा से वंचित गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत जिला चंबा के लिए लगभग 551 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे सड़क निर्माण के कार्य संपन्न होंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि इन गांवों को सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
1: जिला चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 551 करोड़ रुपए की राशि वाली स्वीकृत 65 सड़क परियोजनाओं में से 61 का कार्य शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। शेष 4 सड़कों के निर्माण को जल्द शुरू करने के लिए विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जहां लोगों का घर द्वार तक सड़क निर्माण का सपना पूरा किया है, वहीं ग्रामीण इलाकों की तस्वीर भी बदल कर रखती है। आकाशवाणी के लिए से विकास ठाकुर।
0: जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कुल्लू द्वारा कल निर्मंड स्थित डे केयर सेंटर में दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि रेडक्रॉस बिना किसी भेदभाव के संकटग्रस्त असहाय व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान लगभग 80 लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के दृष्टिगत धर्मशाला शहर के कोतवाली बाजार गांधी पार्क से काला पुल होते हुए बाईपास जंक्शन तक सड़क को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर 27 जून तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि के दौरान वाहनों का संचालन खड़ा डंडा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 503 धर्मशाला बाईपास पर किया जा सकता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत करेगा। ये क्विज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप के अवसर पर शुरू किया जाएगा। इसे देश भर में चलाए जाने वाले विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वास्थ्य और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर आज प्रदेश में एंटी चिट्टा डे के रूप में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नशे विशेषकर चिट्टे के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में ऊना जिले में भी नशे के विरुद्ध विशेष जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी नशे के खिलाफ शपथ लेकर समाज से चिट्टे व अन्य मादक पदार्थों के उन्मूलन का सामूहिक संकल्प लेंगे। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पौत्र हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मुहर्रम मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक शहर में नाहन में मुहर्रम पर 2 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शिरकत करते हैं। हमारे सिरमौर ज़िला संवाददाता ने बताया कि देर रात शहर के गुन्नू घाट में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां तैयार किए गए ताजिए के दर्शन करने पहुंचे, जहां

0: तरसीए पढ़कर इमाम हुसैन सहित करबला के अन्य शहीदों को याद किया गया। नाहन में मुहर्रम के लिए विशेष रूप से शहर में 4 ताजिए तैयार किए जाते हैं। आज दोपहर करीब 1 बजे शहर के अलग अलग हिस्सों में ये ताजिए निकलने शुरू हो जाएंगे। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारी 4 साल की सेवा पर ग्रेड पे के हकदार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 3 माह में एरियर देने का दिया आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब डिपो में QR कोड स्कैन करने पर मिलेगा राशन। पंजाब केसरी का शीर्षक है, कसौली की 5 पंचायतों की महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, 2.5 साल से ज़्यादा कार्यकाल वाले DC और SDM बदले जाएंगे। हिमाचल दस्तक बकौल मुख्यमंत्री लिखता है, भाजपा के 4 सांसद दिल्ली में हिमाचल की पैरवी करने से डरते हैं। HRTC ड्राइवर कंडक्टर भर्ती से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है, युवाओं ने 1 बजे फार्म भरे, 3 बजे टेस्ट, 5 बजे चयन और रात 8 बजे प्रबंधन ने कहा ज़रूरत पर बुलाएंगे। मौसम पर पंजाब केसरी का कहना है, हिमाचल प्रदेश में जल्द दस्तक देगा मानसून। अमर उजाला लिखता है, शिमला में बरसे बादल, आज 7 ज़िलों में बारिश, अंधड़ का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय माँ शूलिनी मेला आज से होगा शुरू, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे विधिवत शुभारंभ। चंबा जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए 551 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत करेगा। और आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आशुराए मुहर्रम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने, इस FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
5: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपके हमसफर भानुप्रिया वर्मा और आप और हम चलेंगे अब से लेकर 9:55 तक कुदरत के रंग में एक अनोखी रेडियो जर्नी पर।

आज कहाँ जाने वाले हैं हम, आप और हम मिल करके इस रेडियो जर्नी पर, ये जानने के लिए बी विद अस ओनली ऑन 103.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: तो जी एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। बात बात पर हमें ये चीज़ याद दिलानी पड़ती है आपको कि कहीं ऐसा ना हो ये खूबसूरत गीत सुनते हुए आप कहीं पर खो जाएं। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि आखिरकार आज आपको कहाँ लेकर के जाएं, एक सबसे बड़ा सवाल होता है ये। और वैसे भी जब कहीं पर ट्रिप प्लान करनी होती है तो सबसे पहले यही सोचने में वक्त लग जाता है कि आखिरकार जाएं तो कहाँ जाएं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जब आप लोगों को रेडियो जर्नी पर ले जाना होता है ना हमें 9:30 to 9:57, तो हमें यही लगता है कि भैया कहाँ लेके जाएं आखिरकार, ऐसा कि आपको भी इस रेडियो जर्नी में मज़ा आए। तो जी आज का जो एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत जगह मैं आपको लेकर के जा रही हूँ। शिमला शहर से, शिमला सिटी से अगर आप जाते हैं इस जगह, तो आपको ट्रैवल करना होगा अप्रॉक्सीमेटली 60 to 61 किलोमीटर्स। वी आर गोइंग टू नारकंडा टुडे। क्या है नारकंडा में खास, ये जानने के लिए आप रहिएगा मेरे साथ।
1: तो जी

राइट, वेलकम बैक. हम जा रहे हैं जी आज ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भीम का चूल्हा, एप्पल ऑर्चर्ड, स्कीइंग का एडवेंचर, हाटू पीक और भी बहुत सारी जगह. यानी कि हमारे वो दोस्त जो इस वक्त शिमला शहर आए हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए और सोच रहे हैं कि शिमला मॉल रोड रिज एडवांस स्टडी, ये शिमला सिटी से बाहर कहीं निकला जाए और शिमला के रिज और मॉल को तो एक्सप्लोर कर दिया लेकिन उसके बाद जाएं तो आखिरकार कहाँ जाए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये. शिमला सिटी से अगर आप जाते हैं 60 to 61 किलोमीटर्स अवे अप्रॉक्सीमेटली, तो आप जा सकते हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जो कि फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए, एडवेंचर के लिए. अगर आप ब्यूटी, एडवेंचर और पीस अगर आप चाहते हैं अपनी छुट्टियों में, तो डेफिनेटली आपको रुख करना चाहिए नारकंडा का. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर, जहाँ के खूबसूरती को देख करके आपको लगेगा कि वाकई असल मायने में यही तो है कुदरत का असल तोहफा. प्रकृति के खूबसूरत रंगों से लबरेज नारकंडा यकीन मानिए किसी का भी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन जाता है. जगह ही इतनी शानदार है. और लोकलाइट से भी मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग जो अब तक इस ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, काइंडली वीकेंड पर ज़रूर जाएं. बातें होंगी और भी यहाँ पर, फॉर दैट आपको रहना होगा हमारे साथ यहाँ. ये है FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर.

ऐसा ही कहती है नारकंडा की खूबसूरत वादियाँ। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर। देखिए इतनी खूबसूरत जगह है, हमारा काम है आपको बताना, बाकी जाना ना जाना इट्स अप टू यू कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं। बट फिर भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप जाना चाहते हैं नारकंडा तो सबसे पहले आप कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल के नहीं हैं, हिमाचल के बाहर से अगर आप आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे नियरेस्ट जो जगह रहेगी नारकंडा जहाँ पहुँचने के लिए आपको कम से कम ट्रैवल करना पड़े, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि जब आप हिल्स क्वीन शिमला का सफ़र तय करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आप हिमाचल से बाहर, शिमला से बाहर से अगर आप आ रहे हैं कहीं से और जाना चाहते हैं नारकंडा, तो आपके लिए अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो द बेस्ट वे इज़ कि आप जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, ठीक है, और बाय एयर ट्रैवल

0: करने में यही होता है कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और आप जल्दी जल्दी अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पर या उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, राइट। और थोड़ा सा वक्त आपके पास ज़्यादा है और आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का दीदार करते हुए अगर आप पहाड़ों में आना चाहते हैं या कि खूबसूरत वादियों में आना चाहते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन है आपके पास बाय ट्रेन। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो कालका तक आपको आना होगा और कालका के बाद आपको शिमला के लिए ट्रेन बुक करके आना पड़ेगा। और जो वाकई जो खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी ना इस रेलवे ट्रैक पर या मैं कहूँ इस रूट पर, तो वो नज़ारे आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। और इन नज़ारों को देखने के लिए स्पेशली जो है इवन कि लोकल लाइट्स भी जो है शिमला से कालका तक अक्सर ट्रैवल करते हैं सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें छुट्टियां प्लान करनी होती हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ में। एनी हाउ, अब आ जाते हैं कि अगर आपको बाय एयर भी नहीं आना है, आपको बाय ट्रेन भी नहीं आना है और अगर आपको बाय रोड आना है तो आपको कैसे आने को मिलेगा, आप कैसे आएंगे आप, है ना। तो शिमला शहर तक तो इजीली हमारे कोई भी टूरिस्ट आ सकते हैं। अब कैब में आ रहे हैं तब तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई बस के ज़रिए आना चाहता है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ISBT तक आप आ सकते हैं और उसके बाद आप जो हैं यहाँ से नेक्स्ट बस ले सकते हैं नारकंडा के लिए, जो कि टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। रामपुर की जो बसेस हैं वो यहीं से होते हुए जाती हैं और ना सिर्फ ये जाती हैं बल्कि पूरे पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर के जाती हैं और उनके डेस्टिनेशंस तक बिल्कुल सेफली पहुंचाती भी हैं। तो आप अगर ट्रैवल लवर्स हैं, आपको पसंद है ट्रैवल करना, आपको पसंद है जगह को एक्सप्लोर करना एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम और आपको लगता है कि भैया हम घूमेंगे तो सिर्फ घूमेंगे नहीं बल्कि कुछ ना कुछ कुदरत से जो है सीख करके आएंगे, लोगों से मिल करके आएंगे, नई नई कहानियाँ लेकर के आएंगे, मेमोरीज़ क्रिएट करेंगे, तो मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए यू नीड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, इजंट इट। सो अभी बातें करेंगे और भी नारकंडा के बारे में, यहाँ की मार्केट के बारे में, भीम के चूल्हे के बारे में। फॉर दैट आपको रहना है हमारे साथ FM शिमला 103.7 MHz पर।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें या ना दें, हमारी गाड़ी तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी आएगी।

तो जी हाँ, मैं आज नारकंडा की रेडियो जर्नी पर, और देखिए बहुत सारे लोग जो वहाँ पर गए हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर ये पता होता है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है बेस्ट म्यूज़िकल नंबर्स के साथ आप तक पहुँचाई जाए। तो अगर मैं नारकंडा की बात करती हूँ तो वहाँ पर बहुत ही फेमस है ये हाटू पीक पर माता का मंदिर, जहाँ पर लोग जाते हैं ख़ास तौर पर शीश नवाने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, और वहीं पर है भीम का चूल्हा भी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा है ये, और आकर्षण का केंद्र भी है। और ऐसी चीज़ें जो कि पांडव कालीन समय की हैं वो बताती हैं उनकी एग्जिस्टेंस को भी। तो बहुत सारी जगह पर उनकी एग्जिस्टेंस से लेकर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आप बात करेंगे कहाँ कहाँ रहे वो और कैसे उन लोगों ने सर्वाइव किया और किस तरीके से जगहों पर उन लोगों ने रहे, एक साथ खाना बनाया, पूजा की, मंदिर किया, ये सारी जगहों पर जो है इन सारी चीज़ों के प्रमाण मिल जाते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ वहाँ की खूबसूरती की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर चेरी के बगीचे हैं, सेब के बगीचे हैं, नाशपाती के बगीचे हैं, और बेस्ट टाइम तो कभी भी है। अगर आप स्कीइंग लवर हैं तब तो आपको सर्दियों में ही वहाँ पर जाना चाहिए, दिसंबर में, मुझे लगता है दिसंबर टू जन फेब या मार्च तक आप जा सकते हैं। और अगर आपको बर्फ़ में नहीं फंसना है, आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ प्रकृति के नज़ारे देखने हैं, तो आजकल का जो टाइम है ना वो बेस्ट टाइमिंग है वहाँ पर जाने के लिए, उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और FM शिमला को सुनते रहने का बेस्ट टाइम यही है, 9:30 से लेकर 9:57 तक का, अगर आपको जानना है हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट ट्रेवल डेस्टिनेशंस के बारे में। फिलहाल हम आ चुके हैं अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप जाना चाहते हैं नारकंडा तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, शिमला शहर आना है, वीकेंड पे आपको ट्रिप प्लान करना है अपने फैमिली के साथ, और बढ़िया बढ़िया से म्यूज़िकल नंबर्स के साथ पहुंच जाना है एकदम से नारकंडा में। फिलहाल वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, तो चलिए वाइंड अप कर देते हैं इसे और अपडेट कर देते हैं आप सभी को लेटेस्ट न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। वक्त है FM न्यूज़ हेडलाइंस का।

नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। सोलन जिला का राष्ट्रस्तरीय महाशूलिनी मेला आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे कचहरी चौक पर माता की डोली का स्वागत करेंगे तथा शोभा यात्रा में भाग लेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत करेगा। ये क्विज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा। इसे देश भर में चलाए जाने वाले विकसित भारत के लिए नशा मुक्ति युवा अभियान के अंतर्गत युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभाव और उनके स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। देश के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पहल पर आज प्रदेश में एंटी चिट्टा डे के रूप में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नशे विशेषकर चिट्टे के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। चंबा जिले में 250 से अधिक आबादी वाले

0: सभी सड़क सुविधाओं से वंचित गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत जिला चंबा के लिए लगभग 551 करोड़ रुपए धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे सड़क निर्माण के कार्य संपन्न होंगे। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पौत्र हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कुल्लू द्वारा कल निर्मंड स्थित डे केयर सेंटर में दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में लगभग 80 लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून को दोबारा आयोजित नीट UG 2026 के चारों सेटों के प्रश्न पत्र और प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 28 जून तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। ये थी अब तक की FM न्यूज हेडलाइंस। कल सुबह 6:57 पर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
1: मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: तो जी चलिए अब से लेकर 11 बजे तक संगम प्रोग्राम में आपके लिए हम लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन म्यूजिकल नंबर, सो एंजॉय कीजिए अब से लेकर 11 बजे तक।

ऑफकोर्स, दिल धड़कने दो, लिव द मोमेंट, और दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन आप खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव ना सोचें। अपने बारे में तो अच्छा सोचा ही जा सकता है ना, आपके बारे में बुरा सोचने के लिए पता नहीं कितने लोग बैठे हैं। तो उन्हें सोचने दीजिए, अपना दिल धड़कने दीजिए, और अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से जी लीजिए जिस हिसाब से आप जीना चाहते हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है, सो भाई आने वाले कल की कोई गारंटी नहीं है, सो लिव द मोमेंट। अक्सर हम कहते हैं कि अपने आज अपने अभी पर फोकस कीजिए। सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर।

जी हाँ, अभी याद रखिए अपने अतरंगी यारों को। और ख़ास तौर पर अभी क्या होता है ना कि जब तक आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तब तक आप अपने दोस्तों के साथ फुल टाइम इन्जॉय करते हैं। धीरे धीरे आपके लाइफ का जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो

फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम नहीं आपको मिल पाता है। तो ऐसे में क्या करना है आपने, आपने वीकेंड पे प्लान करना है अपने दोस्तों के साथ कहीं पर स्पेशल टाइम बिताने का और साथ ही सुनने का ऐसे बढ़िया बढ़िया से म्यूज़िकल सॉन्ग्स जो आप दोस्त लोग मिलकर सुना करते थे, इन्जॉय किया करते थे। अभी क्या है ना, मेमोरीज़ को जो है रिक्रिएट करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, न्यू मेमोरीज़ क्रिएट करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है अपने अपनों के साथ मिल करके थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना।

एफ एम शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जुनूनियत से आपने ये सॉन्ग इंजॉय किया और अब इंजॉय कीजिए जसबीर जस्सी को स्वीटी विद्स एनआरआई से।

एफएम शिमला सुन रही जी आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रोग्राम है संगम। 10:40 जल्दी होने वाले, फिलहाल 10:37 हुए हैं।

தத்தும் தத்த.

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

फिलहाल आज के इस खूबसूरत सफर से नया भानुप्रिया वर्मा को इजाजत, लेकिन सुनते रहें एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: वेव पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ FM शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय माशूलिनी मेला आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे कचहरी चौक पर माता की डोली का स्वागत करेंगे तथा शोभा यात्रा में भाग लेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
2: शूलिनी मेले की सबसे आकर्षक परंपरा माता शूलिनी की भव्य शोभा यात्रा है। इस दौरान माता की पालकी को विशेष रूप से सजाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। हजारों श्रद्धालु स्थानीय देवता वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और पारंपरिक नृत्य इस शोभा यात्रा को अद्भुत व दिव्य स्वरूप प्रदान करते हैं। पूरा सोलन नगर भक्तिमय वातावरण में रंग जाता है। मेले के पहले दिन माता शूलिनी की डोली पूरे सोलन शहर परिक्रमा करती है। इसके बाद डोली गंज बाजार स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचती है, जहां उनकी बहन विराजती है। माता शूलिनी पूरे 2 दिनों तक अपनी बहन के मंदिर में रुकती हैं। तीसरे दिन की शाम को दोनों बहनों की विदाई प्रसंग होता है और माता शूलिनी वापस अपने मंदिर लौट जाती है। माता शूलिनी देवी को सोलन नगर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मान्यता है कि माता शूलिनी देवी के नाम पर ही इस नगर का नाम सोलन पड़ा। मेले का समापन 28 जून को होगा, जिसमें राज्यपाल कविंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। चंबा जिला में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले सड़क सुविधा से वंचित गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत जिला चंबा के लिए लगभग 551 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे सड़क निर्माण के कार्य संपन्न होंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि इन गांवों को सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
3: जिला चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 551 करोड़ रुपए की राशि वाली स्वीकृत 65 सड़क परियोजनाओं में से 61 का कार्य शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। शेष 4 सड़कों के निर्माण को जल्द शुरू करने के लिए विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जहां लोगों का घर द्वार तक सड़क निर्माण का सपना पूरा किया है, वहीं ग्रामीण इलाकों की तस्वीर भी बदल कर रखती है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा

0: संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। ये बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में बहाली हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही है। इसके मद्देनज़र सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मुहर्रम मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक शहर नाहन में मुहर्रम पर दो दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शिरकत करते हैं। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि देर रात शहर के गुन्नू घाट में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ तैयार किए गए ताजिए के दर्शन करने पहुँचे, जहाँ मरसिए पढ़कर इमाम हुसैन सहित कर्बला के अन्य शहीदों को याद किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर आज प्रदेश में एंटी चिट्टा डे के रूप में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नशे विशेषकर चिट्टे के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में ऊना जिले में भी नशे के विरुद्ध विशेष जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी नशे के खिलाफ शपथ लेकर समाज से चिट्टे व अन्य मादक पदार्थों के उन्मूलन का सामूहिक संकल्प लेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM शिमला। सुबह के 11:06 हो चुके हैं। हाजिर है आपका फेवरेट प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से। दोस्तों, पुराने गीतों की मीठी खुशबू और सदाबहार धुनों के संग हम हाजिर है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में। आइए चलते हैं उस दौर में जहां संगीत दिलों में राज करता था और हर गीत एक कहानी कहता था। इन अनमोल नगमों के साथ शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम के, और आपको सुनवाते हैं पहला गीत सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ों में। फिल्म है ताजमहल, गीत लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है रोशन ने।

दोस्तों, पुराने गीतों की यही खासियत है कि हर बार सुने जाने पर भी एक नया एहसास दे जाते हैं। आइए अब सुनते हैं एक और दिलकश नगमा प्रोफेसर फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से। दोस्तों बाकी गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोस्तों, कुछ गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और भी अनमोल हो जाते हैं। सुनिए ऐसा ही खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म है मेरे सनम, गीत लिखे हैं मजर सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है OP नैयर ने।

सुर ताल और भावनाओं का अनोखा संगम लिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत उजाला फिल्म से। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। हसरत जयपुरी के गीत है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: दो सुबह के गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी नगमा आपको सुनवाते हैं भरोसा फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं रवि का संगीत।

देवभूमि की वादियों से उठती सुरीली गूंज, लोक जीवन की सादगी और मिट्टी की महक और लोक संस्कृति के रंगों को समेटे हुए पेश है कार्यक्रम पहाड़ी संगीत। आइए सुनते हैं पहाड़ों की रूह से जुड़े मधुर लोकगीत। कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपको सुनवाने जा रहे हैं धनीराज की आवाज़ में।

पहाड़ों की सादगी और अपनेपन लिए ये लोक धुनें दिल को एक अलग ही सुकून देती हैं। आइए सुनते हैं कल्पना तोमर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला मधुर पहाड़ी लोकगीत।

0: बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, आपको बाकी के गीत लोगे सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ी संगीत। लोक संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है। पेश है कार्यक्रम का अगला लोकगीत, जिसे गाया है अच्छर सिंह परमार ने।

आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत आकाशवाणी FM शिमला से। पहाड़ी गीतों की मिठास में अपनी मिट्टी की खुशबू बसी होती है। चलिए इसी एहसास के साथ सुनते हैं अगला गीत सुनीता अरोड़ा की आवाज़ में।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: पहाड़ी संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत आपको सुनवाते हैं बबली की आवाज में।

श्रोताओं, पहाड़ी संगीत में आज बस इतना ही। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स के महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे

0: won in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. On Ashura-e-Muharram, Prime Minister Narendra Modi today recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussein. In a social media post, he said Hazrat Imam Hussein continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी एफएम शिमला, आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं सावरिया फिल्म से, आवाज़ शान की है, समीर के बोल है, मोंटी का संगीत।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोस्तों, आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में इश्क विश्क फिल्म का ये गीत, समीर के बोल और अनु मलिक का संगीत।

0: फिल्म संगीत में अभी के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, धुनों की मस्ती और गीतों का सिलसिला जारी है। दोस्तों लीजिए सुनिए ये खूबसूरत नगमा सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। फिल्म है किस्मत कनेक्शन, शबीर अहमद के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: Make some noise!

प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में गीतों का कारवा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। पेश है एक और खूबसूरत गीत कोकटल फिल्म से, आवाजें कविता सेठ और नीरज श्रीधर की, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन-जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: प्रोग्राम म्यूजिक मसी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ 103.7 में।

0: गहस पर संगीत के सुर जब दिल को छू जाए तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है दोस्तों। लीजिए सुनिए प्रोग्राम का अगला खूबसूरत गीत। सुनिधि चौहान, ऋचा शर्मा, सोनू निगम, कुणाल गांजावाला की आवाजों में फिल्म है काल, शबीर अहमद के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।
1: I experienced it too.

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और

0: सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं, मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ। सुखू सरकार, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी FM शिमला से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। मौसम कोई भी हो दोस्तों, अच्छा संगीत हर पल को खास बना देता है। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत, प्यार तूने क्या किया फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह की।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
3: म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। दोस्तों, आपको सुनवाते हैं आनंद राज आनंद के आवाज में वेलकम फिल्म का यह गीत। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का ही है।

दोस्तों, हर गीत अपने साथ एक नया एहसास लेकर आते हैं। आइए अब सुनते हैं इस कड़ी में अगला सुरीला नगमा। अंदाज फिल्म से आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

दोस्तों प्रोग्राम का आखिरी खूबसूरत गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल, विशाल डडलानी, उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अनविता दत्त के बोल है, विशाल शेखर का संगीत।

प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का आज का ये सफर अब यहीं तक। मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोपहर के 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सब रंग। प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

दोस्तों कार्यक्रम सबरंग में आज बस इतना ही। 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट

0: शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई

0: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
1: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1800

0: 1938 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

जुलि पितिमिमा छाङमाला ई आकाशवाणी शिमला इनु म छेरिङ पाल्मु तेरिङकी डेग्रिम गचुङनाइन तेरिङ अजयाला स्पिति कि स्वच्छता और कुडे कि प्रबन्ध सेन खिम्सा रङ बाबा कि खातरचुक सिपेका अति कर्ला तेने खेलो इन्डिया।

अमीना मेती दी योजना ते कामयाब जी दोस्त है। खेलो इंडिया योजना ते आया की अति मांदा योजना चिपू मांदा हो स्वस्थ रंग सशक्त रंग आया ची और ना अति फिला अति याकपू का इनो टू याला आया जरूरी इनो की आया स्पोर्ट्स ना आया गेम ची से ना खंजे याला तात्पर्ची ना अति फिला अति नांग दो चुक जा दी थे आया राष्ट्रीय अभियान चिपू इनो दी आया ची हिस्सा ना अति अन्य जा तेने ग्याकर की यहाँ सोमा ची अन्न हई टू याल क्याल जा फिला दी ते हई पहचान आऊँ जा फिला इनो तेने हया सु से नी योजना की प्रयोग का मिना चुया ते ते खेलो इंडिया को लच्छिंग सुमिन था आने किलू नियन पुजी नियन दा जा।

0: स्पीति कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3 बजने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ FM शिमला पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लंबित व कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में उसका 7.19% का वैधानिक हिस्सा प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई दशक पहले बना वर्तमान हिमाचल भवन अब राज्य के लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से संबंधित लंबित पड़ी देनदारियों के जल्द निपटारे को लेकर भी विचार विमर्श किया।

0: मुक्त अभियान के तहत आज प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शिमला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और नशा तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है।
1: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे को लेकर विशेष अभियान चलाया है और वाकाथोन के जरिए, बहुत सारे सेमिनार्स के जरिए और यहाँ तक कि कानून भी जो है बदला गया है हिमाचल, और इसको बड़े सख्ती से किया गया है। पूरे प्रदेश के पंचायतों में मैपिंग की गई है कि कहाँ पर इसका ज्यादा मेनेंस है। इसमें जो है बहुत सारे कदम उठाए गए, खासकर जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिसमें पुलिस विभाग के लोग भी शामिल पाए गए, उन सबके ऊपर कड़ा जो है संज्ञान लेकर कड़े फैसले लिए गए, उनको नौकरियों से भी निकाला गया है। तो हिमाचल प्रदेश में
0: इस कार्यक्रम में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाने सहित लोगों को समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया। अभियान के तहत लोगों को राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय शूलिनी मेला आज से शुरू हो गया है। मेले के शुभारंभ पर ठीक इसी समय शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। शूलिनी मेले के चलते सोलन शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट परियोजना की भूमि अधिग्रहण का करीब 85% कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी भूमि अधिग्रहण अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। प्रशासन द्वारा अब जल्द ही अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांगड़ा पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि प्रभावित परिवारों के राहत व पुनर्वास की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पुनर्वास व पुनर्स्थापन सहित अब तक करीब 2,200 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रभावितों को वितरित की गई है।
2: अभी तक बजट इंक्लूडिंग रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का है, वो जो वन टाइम सेटलमेंट में अभी तक हुआ है ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के आसपास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और जो अलग कैटेगरीज में फैमिलीज आती हैं, जैसे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं, वो 942 के आसपास की संख्या जो थी वो पहले थी, अब उसमें जो है वो कुछ काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, उसको लैंड एक्विजिशन कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर R&R के लेवल पे जो है देखा जाना है। और जब वो क्लेम्स सारे सेटल हो जाए उसके बाद एक्चुअल फिगर जो है वो उसके हिसाब से आगे जो कंपनसेशन का है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सामूहिक चर्चा। विषय है अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। वाचक स्वर नविता चौहान।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित करके की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस का उद्देश्य नशे की लत और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिन विभिन्न संगठनों और सरकारों द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें जन जागृति कार्यक्रम, शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल होती हैं। यदि

0: दिवस हमें नशे से मुक्त स्वस्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है और युवाओं को नशे की बुरी आदतों से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है। 1989 से 26 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस घोषणा को अपनाया गया था। सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई के महत्व को चिन्हित करने के लिए एक वार्षिक दिवस मनाया जाना चाहिए। इस दिन को विभिन्न देशों के लोग एक साथ मनाते हैं। जैसे जैसे नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ता है, ये दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है जो चुपचाप लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, परिवारों को तोड़ रही है और समुदायों को कमज़ोर बना रही है। इसका प्रभाव नशे की लत से कहीं आगे तक है। यह स्थायी तौर पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचाता है। इसी बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने, निवारक उपायों को बढ़ावा देने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग व तस्करी को रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए वैश्विक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया गया है। इस वर्ष संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के चक्र को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने केंद्रित और संगठित दृष्टिकोण के साथ मादक पदार्थों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त देश के सपने को साकार करने के लिए युवाओं और जनता के बीच जागरूकता फैलाकर इस लड़ाई को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत पर बल दिया है। नशा मुक्त भारत अभियान जैसी जन केंद्रित पहलों के साथ भारत एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशा मुक्त भविष्य के निर्माण की दिशा में दृढ़ कदम उठाना जारी रखे हुए है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ तथा नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर आइए हम सभी नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लें। नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक बनता है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उन्हें शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए मिलकर इस मुहिम को सफल बनाएं और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करें।
1: सामयिक चर्चा अभी आप सुन रहे थे। विषय था अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। वाचक स्वर थे नविता चौहान। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: आप है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं ओल्ड हिट्स। दोस्तों, प्रोग्राम का पहला गीत हम लेकर आए हैं आराधना फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी के बोल, एस डी वर्मन का संगीत।

दोस्तों, बीते दौर के इन नगमों में एक अलग ही जादू है। आइए अब सुनते हैं एक और यादगार गीत हमशक्ल फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी के बोल, आर्य बर्मन का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ओल्ड हिट्स। दोस्तों, कुछ धुनें वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाती है। पेश है ऐसा ही सदाबहार नगमा जब जब फूल खिले फिल्म से। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: दोस्तों प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में, फिल्म है सच्चा झूठा।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

दोस्तों प्रोग्राम ओल्ड हिस्ट में आज बस इतना ही। आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त सोनिया वर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज, राष्ट्र और परिवार से जुड़ा है। हमारा विषय है नारी, संघर्ष से सफलता तक। नारी एक शब्द नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, साहस, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है। जीवन के हर मोड़ पर अपने चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वो अपने सपनों को साकार करती है और समाज को नई दिशा प्रदान करती है। मुश्किलों से लड़कर जो मुस्कुराना जानती है, हर दर्द को छुपाकर घर सजाना जानती है, कमज़ोर नहीं है वो, शक्ति का रूप है नारी, अपने हौसलों से दुनिया को बदलना जानती है। दोस्तों, कितनी सुंदर है ना एक नारी की यात्रा। तो आइए इसी भावना के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, एक लड़की जब जन्म लेती है तभी से उसके सामने अनेकों चुनौतियाँ खड़ी हो जाती है। कभी भेदभाव, कभी शिक्षा में बाधाएं, तो कभी अपने सपनों को पूरे करने की लड़ाई। लेकिन आज की लड़कियाँ इन कठिनाइयों से घबराने वाली नहीं है। वो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक छोटे से गांव की लड़की थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। समाज ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने हार नहीं मानी। कठिन परिश्रम और लगन के बल के साथ वो अधिकारी बनी और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। ये कहानी केवल एक लड़की की नहीं, बल्कि उन लाखों बेटियों की है जो संघर्ष के बावजूद सफलता की नई इबादत लिख रही है। उड़ान बाकी है, अभी पहचान बाकी है, इस आसमान में उसका नाम बाकी है। रोक सको तो रोक लो उसके हौसलों को, क्योंकि उसके सपने का मुकाम बाकी है। तो आइए इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, आज महिलाएं विज्ञान, खेल, शिक्षा, राजनीति, सेना और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। फिर भी समाज की जिम्मेदारी है कि बेटियों को समान अवसर, शिक्षा और सम्मान प्रदान किया जाए। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो केवल उसका ही नहीं पूरे समाज का विकास होता है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। बेटियां उन्हें सपनों को उड़ान देंगे, बेटियों को सम्मान करेंगे, उन्हें शिक्षा का अवसर देंगे। नारी है शक्ति, नारी है सम्मान, नारी से ही जग की पहचान। संघर्षों से जो ना घबराए वही सफलता का शिखर पर पाए। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

0: दोस्तों, संघर्ष की राह कठिन ज़रूर होती है, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते। कहा जाता है कि अगर किसी समाज की प्रगति देखनी हो तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति देखिए। जहाँ बेटियों को सम्मान और शिक्षा मिलती है, वहाँ विकास अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो आइए इसी के साथ हर बेटी के सपनों को उड़ान देने वाला अगला गीत सुनते हैं।
1: प्रिय

दोस्तों याद रखिए, नारी बोझ नहीं भविष्य की पहचान है। नारी सम्मान नहीं मांगती, वो सम्मान की हकदार है। इसी संदेश के साथ मैं सोनिया लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत स्थानीय सूचनाओं के साथ।

प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में, फिल्म है ये वादा रहा, गुलशन बापरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

शिमला में एडवेंचर स्पोर्ट्स, फिटनेस और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 23 करोड़ की लागत से विभिन्न एरिया में साइकिलिंग ट्रैक तैयार होंगे। पहली DPRO के तहत शिमला में करीब 85 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। DPRO के तहत शहर और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई प्रमुख रूट विकसित किए जाएंगे, जिससे शिमला देश के प्रमुख साइकिलिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है। ट्रैक का निर्माण इस तरह किया जाएगा कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे।

दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म है दूसरा आदमी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

इसी गीत के साथ अब शैलजा चौहान को दीजिए इजाज़त। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 776 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आइए शुरुआत करते हैं सिरमौरी कार्यक्रम के साथ।

तू सभी सिरमौरी कार्यक्रम सुनना का आकाशवाणी केंद्र शिमला का स्वागत सो एतलाओ सो तू सभी तुम्हारा अपना प्यारा दोस्त अनिल कुमार और अपने सिरमौरी कार्यक्रम सुनना साथी अतल बातचीत करते हैं आम है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के बारे में साथी बातचीत करते अपने सुनना साथी जो आधुनिक

ऐसा सुनो, बहुत ही बढ़िया गाना, लोकप्रिय गायक राजेश मलिक जी की आवाज़ था। और बातचीत कर दे अपने कार्यक्रम चुनाव सत्या में गरीब कल्याण योजना के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पूरे देशों दे गरीबों के, मजदूरों के, मध्यवर्गीय कमजोर वर्ग के लोग, मजदूर सभी लोगों के खाद्य सुरक्षा प्रदान देना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत से तीन खे दो वक्तों को रोटी से नसीबों दिलागी और लाखों करोड़ों परिवार ऐसे सो जिनके खाद्य सुरक्षा के माध्यम से ऐसे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं और अनाज से बैठते तो लोग यह योजना के तहत से 81 करोड़ पात्र लाभार्थियों के हर महीने से प्रति महीने 5 किलो मुफ्त अनाज से बैठते लोग गेहूं और चावल। मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब, मजदूर, कमजोर वर्ग के लोग, पिछड़े समाज के लोग जिनके खाना पीने की कमी हो, तिनके ऐसे ऐसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न कल्याण योजना के तहत ऐसा लाभ भेटता लगा। ये पूरी तरह से बिल्कुल निःशुल्क सो ये जो जू राशन से मुफ्त लाभार्थियों को प्रदान करे जलो। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे जो जो अनाज ऐसे लोग हो बैठते लोग प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर परिवार के सदस्यों के मुफ्त अनाज ये जो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ऐसे बैठते लोग। आगे ऐसा जो कार्यक्रम में से ची भी नहीं तक थिया जब पूरी दुनिया दे महामारी आए, पूरी दुनिया दे जब कोरोना काल से जूझता लगा थिया तो त्यों वक्त होते से ऐसा जो कार्यक्रम में मुफ्त राशन वितरण का से ची भी नहीं चलाया था। पर जब महामारी ज़्यादा बढ़े और लोगों के भुखमरी ज़्यादा बढ़े, कुपोषण के शिकार लोग होने लगे थे, खाना पीना का साधन संसाधन के छोड़ने लगी थी, तो ऐसा जो कार्यक्रम में से 5 सालों तक बढ़ा दिया। पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार होने लगा, उनकी जरूरत पूरी होने लगी, आजीविका के साधन पूरे होने लगे और जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने लगी, इनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी योजना कैसे रुपया लगते लगे और उनके काम ऐसे लोग कर एक जो वितरण योजना सो राशन के वितरण योजना से पारदर्शी योजना सो पारदर्शी तरीके से जो ऐसा वितरण से होता लगा। बेहतर जीवन, आत्मसम्मान, भरपेट भोजन और मानसिक शांति और शुद्ध खाना उसे हम उबेर तो लगो और कितना कहते जो हम खर्चा ज़्यादा राशन पानी के ला होते से भी तीन का बचाव होता लगा। शहरी एवं ग्रामीण दुई क्षेत्र दाय जैसे उपयोगी होता लगा, चाहे हमारे मजदूर है, श्रमिक है, गरीब है, सभी लोगों के, सभी पात्र लोगों के ऐसा जो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत से लाभ बैठता लगा। देशों की अर्थव्यवस्था से स्थिरता होने लगे। 26 मार्च 2020 जैसे कोरोना महामारी दे यूँ वक्त दे ऐसे जो शुरुआत है से और थे जिंदगी के तहत से मुफ्त अनाज वितरण से करा जाला, ऐसी एक बहुत बड़ी योजना थे त्यों वक्त दे जब लोग दो वक्त की रोटी के तरसते लगे थे और लोगों के खाना पीने के भी लाले पड़ते लगे थे, क्योंकि कोरोना वक्त तो कहती आगू तो उठी होती है ना काम करी होती है, तो त्यों वक्त तो ऐसे भुखमरी के वक्त थे देशों के सबसे ज़्यादा जो कमजोर वर्ग सो, श्रमिक सो, गरीब सो, तीन कैसे योजना का फायदा होने लगा थे। देशों के सबसे बड़े कमजोर वर्ग और हाल ही दे पेट भरने का काम ऐसे ऐसा यूँ योजना के तहत होने लगा। भुखमरी दे देशों को बचाव ला और कुपोषण पर रोक लाग ले और ऐसा जो पर्याप्त मात्रा दाम के भोजन, कैलोरी और स्वस्थ भोजन हम से बैठता लगा। वित्तीय भोज के कमी के कारण से गरीब परिवारों के मानसिक बजट और ऐसा खाने पीने की बदी बदी जो खर्चे से बैठता लगा। महामारी कोरोना काल दे सुरक्षा दुनिया का सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा बैठे और दुनिया का सबसे बड़ा जो खाद्य सुरक्षा मुफ्त अनाज

वितरण जो कार्यक्रम से चला दिया जिन 80 करोड़ लोगों का ऐसे परिवारों का लाखों लोगों का ऐसा जो फायदा से हुआ। और यूँ वक्त दे से जो वक्त दे बहुत ज़्यादा जरूरत है जब कैथी काम ने करी होती या कैथी खेचौख ने उठी होती हो कि उके काम काज ने चली लोगों के अपने फसल ने बोई जब कोरोना चरम सीमा पर थी जब लोग एक दूजे से दूरियां बनाए तो थी लोग पास ना होती तो त्यों वक्त दे से ऐसे जो कोरोना वक्त था प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के वरदान सभी तो है और सभी लोगों के देखा फायदा भी बैठा। तो ऐसे बातचीत तो अपने कार्यक्रम सुनना सत्या में जारी थों दे सुना दे लोग के।

बहुत ही बढ़िया लोक गीत कृष्ण लाल सहगल जी की आवाज़ दा और बातचीत कर ले अपने कार्यक्रम सुनाओ साथ में सोशल मीडिया के सदुपयोग के बारे में। सोशल मीडिया का सदुपयोग ऐसे बहुत जरूरी है सो, क्योंकि जी देखा दुरुपयोग को ला तो हर बातों का किए ना किए हर कामों का गलत दुष्प्रचार हो जाला। ऐसे जो हमारे आम जीवन के तेज स्वस्थ होता सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक बहुत बड़ी कामयाबी असो, और तकनीकी क्षेत्र दे ऐसे जो इंटरनेट असो सोशल मीडिया असो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असो आज के जमाने दे ये जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे लोगों ज्ञान की ज्योति और शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा होंगे लगा। संचार साधन बहुत बढ़िया साधन हो सो जिंदे ले एक ही बातों का आदान प्रदान ऐसे दूर तो कोई सको कई भी जानकारी देनी हो सूचना देनी हो क्यों बातों के बारे में क्यों योजना के बारे में नीतियाँ कार्यक्रम सरकार के कामकाज से बिल्कुल सभी के सामने प्रस्तुत हो जाओ। रोजगार के नए नए अवसर बढ़ते लगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्वरोजगार के ऑप्शन हमको बढ़ते लगे और रोजगार के माध्यम से जो अवसर है से क्यों भी क्षेत्र दे बैठे सको चाहे औद्योगिक क्षेत्र सो या वो का जो व्यापार का साधन सो से अभी हमें मीडिया के माध्यम से कर सको व्यापार का प्रचार प्रसार और विस्तार होने लगा कई भी चीज़ कुछ के बिकनी है तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा जिंदगी मार्केटिंग होने लगा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा हुनर का टैलेंट का प्रदर्शन होने लगा ताज़े समाचार और सूचनाएँ लोगों को बढ़ती लगी सरकारी योजनाओं की जानकारी से सभी लोगों के बढ़ती लगी पर्यावरण शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारों की जानकारी सभी लोगों के ऐसी जो बातों से हर घर तक पहुँचती लगी। सामाजिक जागरूकता होने लगी चाहे पर्यावरण सो स्वास्थ्य सो अपने आसपास का वातावरण सो जन जागरूकता सो किसी योजना के बारे में बोलना तो सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल कुछ ही वक्त भीतरों से ऐसे जो चीज़ों से लोगों तक पहुँच जा ऐसे बातों का सीधा जो आदान प्रदान है से आम जनता तक होता लगा। सामाजिक जागरूकता होने लगे पर्यावरण शिक्षा स्वास्थ्य हक अधिकार लोगों की सामाजिक आर्थिक मदद भी बैठते लगे। ऐसे जो कई प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से लोग रोजगार के वे साधन चुने लिए वीडियो के माध्यम से ब्लॉगिंग के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग और कई प्रकार का ऐसा जो लोग ऐसे दादा अपनाए हुआ लोगों का मानसिक मनोरंजन भी होता लगा। स्वस्थ ग्राहक सेवा बढ़ते लगे क्यों भी चीज़ों के बारे में कोई भी पूछना है कहीं भी जानकारी लौने तो सोशल मीडिया के माध्यम से मिनट बेहतरे उपलब्ध हो जाओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर दे पहचान बढ़ते लगे और जो गांव गली नाले आसपास की जगह कैसी भी लोग देखें तो से जी मीडिया के माध्यम से बिल्कुल सार्वजनिक होते लगे। हाँ कुछ ही देखा से नुकसान बहुत लगा समय की भी बर्बादी होने लगे साइबर हैकिंग भी होने लगे और जो हमारे एक कुछ गुप चुप की बात हुई थी निजता का अधिकार का भी उन्होंने होने लगा धोखेबाड़ी अश्लीलता सामाजिक लत दूरियाँ स्वास्थ्य और बुरा असर पड़ता लगा। जाति धर्म क्षेत्र भाषा अलगाववाद इंदे गए भी लोगों के कई प्रकार के विचारों से जो कहती ना कहती वो कि देशों के द्वारा राष्ट्रवाद के भी खतरा पहुँच सको। ऐसे जो लोगों के रोजगार के अवसर भी प्रदान होने लगे और मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा होने लगे एक ही दूसरे से सीधा संपर्क होने लगा और पूरे के पूरे जो दुनिया है पूरा का पूरा जो देश है से बिल्कुल एक ही दूसरे के संपर्क दास हो एक ही दूसरे के बिल्कुल करीब सो अब ऐसे जी दूरी नहीं रह जाए कि ये बात होते तो क्यों बातों पहुँचाना हो देश लागू थे भी नहीं लागू थे अब तो बिल्कुल सेकंड का काम हो सो कई भी बात हो तो फोन करियो एक ही मिनट भीतर बोले जाइयो वीडियो के माध्यम

से, ऑडियो के माध्यम से, कागजों के माध्यम से, बिल्कुल सभी चीज़ों का आदान प्रदान से बहुत ही कम वक्त बितरा होता लगा जो जो लोग है सोच बे नहीं थी से जो से एवे दुनिया दोनों लोगों और लोगों की उम्मीदों सो जाता और आम जनमानस की उम्मीदों सो जाता जो जो जो देखना हो बिर तो लोगों ये जो सोशल मीडिया का ही कमाल है। ऐसे लोग थोड़ा समाचार भी सुना दे। एतलो मुरमसो यो देसो पैगंबर मोहम्मद के नमाज है हजरत इमाम हुसैन और तीन के साथ जिन जो जो शहीद हुए तीन के शहादत को याद दिलाना का ये जो देश हो सो जिन्हें करबला दे सत्य न्याय की रक्षा है अपने प्राणों की आहुति दे अपने प्राणों का बलिदान दिया शहीदों की याद दे एतलो जो ताजिया निकाल दे लगे और करबला के शहीदों को से सर्वोच्च बलिदान पाने वाले लोगों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा दहलो है ऐसे जो प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंधन कर लिए ताकि मुहर्रम का ऐसे जो पवित्र दिवस हो से बड़े अच्छे तरीके से मनाया जलो और ऐतिहासिक शहर नांदेड़ से दो देशों जो पुण्ड जो कार्यक्रम चलता लगा और भारी संख्या में लोग आंदेव लगे और लोग अपने भागीदारी भी दहले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है एतलो प्रदेशों दे एंटी चिट्ठा डे के रूप दे विशेष जागरूकता अभियान चलाए थो नशे के विशेषकर बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करे जाने लगे और साथ ही ऐसे जो प्रदेशों भीतर जो मुख्य स्थानों दे नशे के विरुद्ध से जन जागरूकता अभियान जन जागरूकता ये जो जो काम से करेलुआ और अधिकारी कर्मचारी जितने भी सरकारी अधिकारी सो कर्मचारी सो क्यों इच्छा सो तीन के नशे के खिलाफ से शपथ ध्यानों का काम है प्रदेश की सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का होने लगा तो ऐसी बातचीत तो जारी तो सुना था एक बहुत बढ़िया लोकगीत।

बिल्कुल जी, जब पहाड़ी बोली रहा है शोक गीत या शोक नाटे बोले सो की तो इन देखिए बड़े बात नहीं आती, बड़े बढ़िया लोकगीत। देखो ना जी, समय समय पर सरकार अलग अलग स्कीमों हम के लिए तैयारी एक योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ना, मतलब का एक दुर्घटना बीमा कह रहे पलिए तो सही तुम्हारा खाता खोलिया दो बैंकों दा या डाकघरों था बात एक। दूजी बात, उम्र से 18 वर्ष 17 वर्ष बैठ के

तोई वाणिज्यिक। बिल्कुल जी, एलपीजी उपभोक्ता जो सो तीनों तैंक जो गैस घरेलू एलपीजी आपूर्ति से ब्यो करे बढ़ा पायो। बिल्कुल जी, क्षेत्र जो अप्रतिबंध से टाल पियाओ आपूर्ति अभी जो हमारा पश्चिम एशिया थिया तेते पोल के स्तर के रोकड़े बे आपूर्ति जदड़े बढ़ गयो। जिर पोल ये एलपीजी गैस दे थी तैं जो बे प्रजा प्रतिशत जदो अबे मिलनो। पेट्रोलियम तो ही प्राकृतिक गैस मंत्रालय बोलू जाए संगटरे वक्ते जो निलंबित थोक एलपीजी आड़े 50% माल्ट जादे एबे जो चिंदी दणियों ये पाक जो उद्योगों वाणिज्यिक या औद्योगिक जितने उद्योगों तो थोड़े माछ हो तीनों कभी बड़ा फायदा या तीनों कभी बड़े राहत मिलने। साथ ही मंत्रालय एबे बोलू जब एलपीजी रे आने में सुधार कि जल्दी एवे दृश्य लगे। देखो ये तो कि खास खास खबरें देखो खबरें रा रजा मजा तो ही होना जो इस वक्त तुमको कि बड़े ज्यादा नोटिस नहीं होली। कलाकार मरे बड़े पुराने लोभराम गुंजेटा इन गालों जीवे भगरथी है।

बिल्कुल जी भागीरथी है ये भी नाट्य यहाँ भी हमें सुने बड़ी बढ़िया। आज ही जो देखो सोशल मीडिया बोली भाँ रेडियो बोली भाँ टेलीविज़न के तो बोली एक ही बात आज ही जो अखबार हो गया शायद आव लगे हो छोटू नशे धोखे रिबाई थी। बिल्कुल जी जो आज का देश रो मारे युवा ही रे जया लो या देखी जे हमेशा अखबार पढ़ी या फोन टाले पढ़ के खबर हो जे नशे पाँ फलाने जगह ए रो फलाने जगह ए रो गोर रे गोरो नुकसान या बोली जे पूरे जुआड़ो लगे हो अगर लौता जो या समा बोली कि जे या वक्त बोली जे वक्त बड़ा खराब अच्छा वक्त फिर खराब जो बे बोली जी जा जब शून्य आ समा नहीं रहा बोली ये डोरो था बोड़ो था अब तिरुणिया थी देखिए हाँ कुछ ज़्यादा बड़ी छोट तो सटी उपाधि बिल्कुल। तो आज ही जो हम चदुकी नहीं बोलूँ पड़ी सिर्फ जो छोटू बारह तेरह वर्ष तो बुढ़े गो ना तो सिर्फ ध्यान रखना तेरा सौंके रहा कसों के सडियो आजो बिशो कोशिश करनी चाहिए माँ बाप तेसों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो संगे बताओ से स्कूल तो का करो कि पढ़ो तेस पूछो हंसते खेलते पूछो कबड़े डराओ कबड़े पैरे पाँ करो कहीं से ऐ उम्र हो ए बारह तेरह वर्ष तो भी उम्र डेगो ना उन्नी बीस वर्ष तक इन जो छोट डेगो से डेगो बड़ा मुश्किल था होता। दूजी बात घर वाला माहौल सही जी बड़ा बढ़िया हमेशा हंसते खेलता मोह से करो बिटका छोट समझाओ प्यार तो समझाओ और आपू बच्चे माँ बाप को देनी गढ़ने से ही बिठ के और इरा मॉल टेना ही नहीं कि बीड़ी सिगरेट शराब इरा नशा कि छोटू गांव का करना ही नहीं कि छोटू रे भी जीव करो बिल्कुल को देनी करना भले ही हम आपू पिणी आयो कोई हो माँ चोपर बैंड के करो तो बैंड के करना बिठका को देनी करना बाल मन बोली भी छोटू फुल टूरा मन हो जर को डेगो ना तो है मुश्किल जाओ लौने का। तीजी बात तेरे दोस्त कह रहे हो बिल्कुल साथी संगे बोलो संगत की बड़ी रात की हूँ अपने खोगवा जिंदगी मेरे चढ़ागवा मुँह एक जो मारे कहानी लाई थी बोलिए जरे संगत रंगत तेरा ही हो या देख लो हमेशा जे को संग डियो उठो बिशो हमेशा साथी ध्यान रखना और ये छोट संग रखना जो पढ़ने वालों हो चलो पढ़ने ना हो अच्छे घर छोट संग रखना अपने छोटू उससे बढ़िया संस्कार हो और जेरा संस्कार हो जेरे संगत हो छोटी रंगत में तैयारी बनो जब देखो छोटू जो एकांत दूर हो कम समझो पो तो समझो कि गड़बड़ो बे या चिड़चिड़ो बातों बातों के रुशियो कि गड़बड़ो ढबड़े शासना पढ़ने के ज़्यादा जोर ना देना जब खूब पढ़ पढ़ पढ़ एक ही चीज़ ना बे छोटू बोल भी चिड़चिड़ो पढ़ो ए बोलो जोड़े पढ़ियो बेटिया तेड़ पढ़ो तुम्हें कम पढ़ियो कोई बात नहीं जब पूरे रो लो एक दो पेपर दे या बसो दे पूरे रो लो ये देखो जब कुमार जा भी मैं मिला जब मरा बसो बस आना अगले बसो तो ही पढ़ी पर अपनी जिंदगी ने करे खराब ठीक हो जी छोटू ने एक व्यायाम करा छोटू तो नो नो व्यायाम कराओ संगीत देखो तो सर रुचि करके कहो छोटू रुचि जगाओ तेरे खिलने हो खिलने का आज कातनी कमी हो कितनी आज खेलो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी टेनिस शतरंज तैराकी जिमनास्टिक किए में रखो तुम्हें किए में खेल तेस तुम रखो नसने रे शौक हो नसने रे गाने रे हो या कि ग्लैमर रे हो बोली बढ़िया लौते रहते रे किए भी शौक हो व्यवसायिक शौक हो जिन्हें तेरे जानी हो जेर का गाँव गाँव बढ़िया डे सको तुम्हें तेस तिर के ही रखो। एक बात चुजी अपनी रुचि नहीं थोपने को देना ना मेरे तू छोटू जो कसरे लटना बकीली टेना कसरे डॉक्टर जो मारे ना मन सिकता बन दो डॉक्टर इंजीनियर वकील ऐ टेना

काबरी बदल गयो है, पर छोटू तिर के ड्यौन दियो जर के तेरा शौक रहो, जर को उसे बढ़िया ड्यो सको। देखो दुनिया रंग बिरंगो कमाने का आज मौके ही न सो रही हो, बस छोटू अपना शौक वा से ही तो ये गुरा माहौल भी ठीक वा से ही। देखो तो को माहौल ठीक हो धंधा थोई बनो लक्षण कह रही हो। देखो तुम जो बड़े छोटू रे आखे लाल हो गई या तेसरे लत दो कि बास लग गई आंदी रोशो आ गई आ तो मुँह कि पीऊँ लगो समझो से नशो दे फुस लगो ढोबड़े बिदना समझावना को मैं डरावना भी या तेसरे यार दोस्त संगे रखना भी समझावना तेरे पाम छोटू भी काबू दिया जो जो ढोबड़े समझाए वा सको करे वा सको तो तुझके टेम दाइयो गोरे बिटका यार मोल टोना रामायण री महाभारत री धार्मिक बतलानो फिर कीर्तन गाने तसरे छोटे शौक नहीं आते भी हो जैसे और नहीं आते तब जरूर तेरे कारण से बात पढ़ लगी हो मैं फिर लाओ कीर्तन लाओ रामायण कथे महाभारत कथे लाओ जो इरा मोल बनो जो तेसरा इर का नशे जो ध्यान ही नियो ठीक हो घूमते फिरने दिया करो बिल्कुल इन छोटू खुश रहो घूमने फिरने का वहाँ बसोदा एक ही टूर ला नेड़ी जहा टूर ला अपने रिश्तेदार को दियो तुसरी माँ माँ माओ से छोटू इक नहीं हो रीति रिवाज संस्कार छोटू इन्हें नहीं हो मिड़क नहीं हो छोटू आप संगे इरक दिखाओ छोटू पुन रोई हो जितना व्यस्त रहो छोटू ना तेतु नशोदा दूर रह लो जितनु अकेले रहो एकांत रहो जो पूरा पढ़ दे पूरा आप तीति करो काम पढ़ो भाना पढ़ो का कर लो आज हमें आई दिख देनी पर छोटू आप संगे निर्णय पुरो जरूर वहाँ की है ना करो आप संगे इरा रखा वहाँ बातों लालु ही तेस पस लो तेसका बढ़िया लगाओ काम उड़ो लगाओ तेस का करो छोटू बद बोलो और वह और छोटू खुश बो जब मुझे पूछो का करो आधी जो ज्यादा उपदेश नहीं देने पड़ी व्यवहारिक दुनिया छोटू हर चीज़ समझो देखो कहीं वे आजकल फोन हो तो सब कुछ हो बस एज ए माहौल ठीक रखो गोरला माहौल ठीक और जकी धंधा बिगे बिगड़ हुआ जे बोली भी बिगे नशो तो कहूँ फंस गो न्यूट्रॉल लगा तो डॉक्टर सलाह जरूर हो बिल्कुल जी नशा मुक्ति केंद्र रुकनी हो कि चमत्कार जा तो नहीं होना पर टाइम लागो ढबड़े ढबड़े दो चंद महीने चौ महीने मिटके सभी एकदम नशा छड़ा दे जब पलिए हद नशा करो ढबड़े ढबड़े कम करो से कम करो तो मन एरा मन टो तो सजो नशो तो नफरत ही हो बिल्कुल हम आई बोल सकूँ आधे दो हमारा शून्य आँख जाए पढ़ाई लिखाए सब ठीक हो पर जिंदगी जब न रहो ठीक संस्कार जब ठीक न रहो तो धंधा मड़ावे ठीक हो जी गोल बात थे एड़ी बे एक बड़े बढ़िया तुमको नट्यो जी सुनिया रे मजा वाले कलाकार पिंकी।

बिल्कुल जी शिलू है ए रियली रिनाटी, बड़े बढ़िया गाने वाले। आज के कर कमरा बे देखो वक्त हुआ है अपने दोस्तों तुम्हें मुझे इजाजत बद शून्य तुमक जीवे बे राम राम।

महास्वी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। लीजिए अब पेश है किन्नौरी कार्यक्रम।

किनोरिंग भाई सी नमस्कार जो आकाशवाणी शिमला केंद्र तो जो प्रोग्राम कल्पारंग कुल्लू रिले केंद्र ले रिले आचो भाई सी सुरेश नेगी तुरोक सुख दोरिंग प्रोग्राम निशिस हाजिर तो भाई सी दुख दाम तो चाग किनानु तुरोक सुख प्रोग्राम रूपरेखा बारे जानकारी के तो कि भाई प्रोग्राम को मोथ कशित तो भाई सी ख्याल तक कि भाई प्रोग्राम को मो गीथंग वार्ता लिखा शीतो नहीं हो दिन ची ख्याल तक कि भाई कशानु किसान बागवानों तय दो बारे जानकारी का शीतो नहीं हो बैसे ख्या तक कि भाई प्रोग्राम पंग शुरू लानी का उमस सांदा मातंग चुगो कुमो कशा जुसान जालन दे नहीं हो बैसे ख्या तक कि भाई आमतौर दिन कशांगा माऊ स्वास्थ्य होता है चिंतित नीच नहीं हो जू लानवी जू तय समय तो नहीं लिखा शानू वाल जरूरी नीच नहीं हो और इसकी ख्या तक कि भाई जू माऊ ड्याऊ कुमो या मोनाऊ कुमो थली टोतना नी मातंग कशा चिंतित नीच नहीं हो होजिली कशांगा नीच की भाई कशांगा टोतना नी मातंग मा या कशानु आखा की मातंग मा सांदा कशा सुनचे सुनचे बोधी आखा दो नीच नहीं हो होदेश की नहीं हो ख्याल तक कि भाई जो इध तुलसी नहीं हो जुपन कशांगा आमतौर दिन माऊ माऊ ख्याल तक कि भाई गमलाओ कुमो या माऊ पंठाऊ भैरंग कशांगा दास सान सान पुष्प दास नहीं हो जो कशांग तैस वाल फायदेमंद नहीं हो आमतौर दिन कशा शोंग शोंग चुको चंख्या मातंग मा तुलसी पंग आम तौर दिन बहरंग जो का ख्याल तक कि भाई जिगी देस गमलों को मोशेस नहीं हो जो कशाम तेस ख्यामी को होदेस नहीं हो जो भारी फायदेमंद रहे के जो गुणकारी रहे के लाभकारी नहीं होदेस की ख्याल तक कि कशा ख्याल नहीं हो कि भाई जो तितरा पौष्टिक नहीं हो जो पंग ख्याल तक कि भाई कशा चू देस हाचिमा या बलगम देस बनना या बुखार हाचिमा तंगमा जो फिटाऊ तेस वाल फायदेमंद नहीं हो बैसी ख्याल तक कि भाई तुरुक सूर्य

बैसी दो का किनास गिथंग तो रोंची नहीं हो बैसी खेत की भाई सरकार से जो जानकारी की दो कि भाई नशा पूछूंग मुतें से सही सही जो समाज सेवी संस्था रहे कि सही एक ही चीज़ प्रशासनिक अधिकारी रहे कि सही मुलाजिम से एक ही चीज़ जो पूछूंग मुतें से प्रयास लनो नहीं हो जोर ख्याल कि भाई सही कशानु देशों को सही मीका एक ही चीज़ जो सेवागीता लन्ना तकमा माऊ माऊ दो लन्ना तकमा जो वाल फायदेमंद नहीं तो नहीं हो वैसे ख्याल कि भाई आम तौर दिन जो नशा इत ख्याल कि भाई जो जो प्रयोग कशांग ख्याल कि भाई गाटो गाटो लंच नहीं हो दो न्यूम से दो आधी हाची में न्यूम से दो ख्याल कि भाई जो मनी नहीं कि भाई दो माऊ माऊ ग्रुप को दो लंच नहीं हो जूस ख्याल कि भाई जो चिट्टाऊ देश के नशा जो कशानु ख्याल कि भाई परिवार उतें ऐसा नुकसान तो सी नहीं हो दो रहे कि कशा ख्याल कि भाई दो दो प्रयोग लंच अमी दो ख्याल कि भाई दो जीवन भर या टोदस ग्रस्त हाची थी या और इसके कशा नहीं हो लेकिन जोर कशा ख्याल कि भाई एक ही हाची से जुपुंग नशा मुक्त रहें कि चिट्टा मुक्त लन्नु तैंस प्रयास लन्ना तंगा जो युवा पीढ़ी ही जुपुंग लन्नु तैंस जो ऐसा दम तरीका से तो कदम ठोस नहीं हो जूपुंग शुमू तय कशानु देशों या कशा वालू माध्यम ने लोशिमा तंगमा या कशा इधर जागरूकता शिविर तो दो माध्यम ने लाना तंगमा जू से कुछ ऐसी फायदेमंद रहेंगे कि दो दुर्गामी परिणाम वाल दम नहीं तो नहीं हो जू आशा रहेंगे कि नीरंग बीरंग आई की थी रोन चीज भाई से मायूम नहीं का दो जूगी था।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। शुरुआत करते हैं हेमराज चंदेल के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी निवारण दिवस को एंटी चिटा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा में बताया कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष से एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे जैसी सामाजिक बुराई के नाश के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। इस दौरान एंटी चिट्टा जागरूकता रैली को भी रवाना किया गया। इस बीच कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने आज शिमला में एक कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में भविष्य में होने वाली सभी सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इस अभियान में सभी जिला उपायुक्तों की परफॉर्मेंस भी आंकी जाएगी।
1: दो चीज़ें की जा रही हैं। एक, जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा, ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी हैं उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस से नंबर दिए जाएंगे।
0: इस अवसर पर प्रदेश के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि चिट्टा रोकने के लिए प्रदेश पुलिस केंद्रीय और अन्य बड़ी एजेंसियों के साथ तालमेल से कार्य कर रही है। इधर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने शिमला में नशे के दुष्प्रभावों व राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। विभाग के सचिव सीपी वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में नशा समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने युवाओं से खेल, शिक्षा, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान करते हुए नशे से दूर रहने पर बल दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार का अधिकार व पारदर्शिता, काम का भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान हैं और इसके अलावा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जी राम जी योजना 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना

0: के नाम पर झूठ बोलकर प्रदेश के हितों को दांव पर लगा रही है। जयराम ठाकुर ने सरकार को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी है। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने परंपरा के अनुसार मां शूलिनी की पालकी का विधिवत स्वागत किया और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। धनीराम शांडिल ने कहा कि मां शूलिनी को समर्पित ये उत्सव समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है।
1: शूलिनी मेले के इस पावन अवसर पर सभी सोलन वासियों को, प्रदेश वासियों को, मैं तो कहता हूँ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में डिक्लेयर हो चुका है। ये मेला जो बहुत ही पुराना मेला है, हमारी धर्म और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, हमारी विरासत। ये मेला पुरानी परंपराओं को आगे लेकर बढ़ता आया है।
0: शूलिनी मेले के सफल आयोजन के लिए सोलन जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस मेले के दौरान होने वाली सांस्कृतिक संध्याएं, खेल व अन्य गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और दोपहर बाद से कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापक वर्षा हुई है। इसके अलावा राज्य के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। इसी के साथ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए, अब पेश है बिलासपुरी कार्यक्रम।

तेरी बंगा रे रोन चुन काल चू चू लगती गाया करते थे लीला शर्मा और तिनारे साथी। तो हाँ कने कुछ खबर भी लगानी है। पहली खबर एड़ी भई सरकारें औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ता खातर गैर घरेलू पैक्ड LPG री आपूर्ति आ रहे सारे प्रतिबंध जे से टाई तुरे। आपूर्तियाँ जो पहले पश्चिम एशिया रे संकट ते पहले जे ऐसे आपूर्ति बहाल कर दी गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय खाते बोलिया गया भई संकटे रे दौरान निलंब जड़े निलंबित थोक LPG री आपूर्तियाँ जो जे ऐसे पहले ते जे आ से जी प्रतिबंधित जी थोक आपूर्ति साजो 50% फीसदी से ज़्यादा जी असें बधाई तुरा इतने वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता जो जी इसे राहत मिली। ये बहाली जी से LPG आपूर्ति वाली स्थिति सुधार के बाद जी इसे की गई। इस सौगी सरकारें PNG कनैक्टिविटी रे विस्तार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अगली खबर एड़ी भई सरकारें पासपोर्ट आवेदन री फीसा च जी आसे बढ़ोतरी की। छतियां प्रिश्टां वाले नवें पासपोर्टा खातर या दोबारा जारी करने खातर पासपोर्ट करने रिफीस जिहड़ी से 2500 जी से 2500 रुपये करी दी। विदेश मंत्रालय री सूचना रे मुताबिक पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 जी आसे 1 जुलाई ते प्रभावी होना। तत्काल रे पासपोर्ट जे नवें बनाने या दोबारा जारी करने खातर फीस जी से 5000 रुपये होनी और जे साधारण पासपोर्ट है या तिना जो दोबारा जारी करना तो तिनारी फीस जी से 3500 रुपये होनी और सौगी सरकार खाते जिहड़े तत्काल श्रेणियां रे पासपोर्ट है तिनारी फीस जी से बधाई कने 6000 रुपये करती। जबकि पहले के टाइम च ये फीस साधारण खातर 1500 थी और तत्काल खातर 2000 रुपये थी। अगली खबर एड़ी भई साल 2011 री जनगणना के मुताबिक जे ऐसे 250 ते ज़्यादा आबादियाँ वाले गाँव जड़े से सड़क सुविधा के जड़े वंचित गाँव है तिना जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे चौथे चरण के अंतर्गत जी ऐसे शामिल किया जाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे चौथे चरणे रे तहत चंबे खातर 550 करोड़ रुपये री जी धनराशि से स्वीकृत की गई जिसते निर्माण जिहड़ा सड़क निर्माण का काम होना। विधानसभा अध्यक्ष और अधिकारियों जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने खातर आदेश दिते। अगली खबर एड़ी पे सोलन जिले का जिहड़ा राष्ट्र स्तरीय माशुलिनी मेला से अज शुरू हो गया। इसका शुभारंभ जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होरी कीते और मुख्यमंत्री होरी कचहरी चौका ते माता री डोलिया का स्वागत कीता और शोभा यात्रा च तिने हिस्सा लिता। तो ये तो थी कुछ खास खास खबर तुह कने अहें कुछ गल्लां बातां जिहियां टाइमां टाइमां दे मुताबिक जी असें लगाते रहते। अज अहें गलबात करनी भई अहरा से जे स्मार्टफोन आ तीसरा अहें जुगती कने उचित इस्तेमाल किया करिए। अज के टाइम में चाहे देखिए दे भाई स्मार्टफोन जे आसे मारी रोजमर्रा की जिंदगी च एक राइक अहम हिस्सा बनी गुरा। ये ना सिर्फ मारे माणू रे गलबात करने रा ही एक साधन आ बल्कि पढ़ाई लिखाई रा बैंकारे काम करने रा मनोरंजन करने रा व्यापारा रा सरकारी सेवा तक पहुँचने रा भी एक खास जिहड़ा से जरिया बनी गुरा। जे स्मार्टफोना री अहें जे अहें स्मार्टफोना रा सही और जुगती कने जे आ संतुलित मतलब तरीके कने इस्तेमाल करगे ता इस ते क्या हुंदा पे मारी जिंदगी च जे इसे मारी जिंदगी जेड़ी से बहुत

कार्यक्रम तु सबिरा डॉक्टर घनश्याम सोनी नमस्कार के रसा स्वागत के रसा औज के कुल भी कार्यक्रम देखा जैसी रूपरेखा रोनी सा सोखी चंडी रोनी देखा जी आस औज गलबात लानी डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया ने बदलाव भारत बदलू दसा अवे खिसन चाहे एक कौड़ी भी नहीं हो तो अस तबे भी कारोबार करी सका सी देश दुनिया घूमी सका सी की वजह एक मोबाइल होला तो तू इन्हें सब चीज सारी सुख सुविधा सी डवा टका खरीद फरोख्त जानकारी सब कुछ सा तू इन्हें और इस्तेमाल करना इन्हें चाहिए। और दूजी गल जे वस्तु और सेवा कर रहे बारे में आसा गलबात लानी और बे बे आसा संध्या ठाकुर रितु सूद और रमेश कुमार रे ये लोकगीता से चुने देसी इंद्रा मजा भी लेना और नवी ताजी खबर भी आसा लानी। तो देखा जी सभी ने पहले आसा जैसा बांका जे लोकगीत सुनाऊं संध्या ठाकुर रे आवाज आना तले आजी महाराज लोकगीत मजा

देखा जी याद आ से लोगे चुनू गानू आई थी संध्या ठाकुरोरा। देखा जी एक महत्वपूर्ण जानकारी सा जुना सा कार्यक्रम के जरिए आम तमाम गड़ा ग्रां शहर डगर सब जगह रहने वाले भारतवासी थी हैं जरूरी सा और खास करिए हिमाचल वासी। भारत देश रे बाकी प्रदेशाना जनगणना रा कोम तकरीबन पूरा हो ही गो दशा यानी प्रथम चरणा रा मकान सूची करना रा तो ही रहता है। तो अपने हिमाचल प्रदेश ने भी ए कोम जैसा सो चलू दसा जोरा शोरा ना ऐ जैसा पूरे महीने भर चलना सा सो 16 जून ने लिया 15 जुलाई तक 30 दिहाड़े ने जैसे कोम पूरा लोड़ी हुआ। भाई हर नागरिक रा हिमाचल वासी रा फर्ज बना सा जे प्रगण का आसरे गौरा जा सी तो तीन रे तैयें जैसा तीन रा स्वागत करे जानकारी दिया शुभली जानकारी दिया तीन वे खुश करे तीन किछ तुसना ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी सिर्फ जनगणना संगे जुड़े दे ये 33 सवाल सी प्रश्न ये सवाल बड़े जरूरी सी। इन सवाल पूछिया आसरी कोई

आमदनी ना कहीं ना कोई बढ़ोतरी होनी ना कोई घटाव होना, यह सिर्फ सिर्फ देश ने समाजाना जैसा नीति निर्माण जो नीति बना सी ना आसी सुख सुविधे रहते हैं नीति निर्माण और अनुसंधान को माना होना सा और जे आसे जानकारी देनी से मकान मालिक रोन वाला 100 जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय सा ऐसा जानकारी वे ना तो प्रगणक ना कोई नहीं बोंडी सकता थी सो गोपनीय रहनी उनका मकसद सिर्फ एक ऐसा जे पहला चरण जैसा जनगणना दूजा स्थाई रहा जो तहत जैसा सो मकान सूची करना रसा जितने मकान होले आसे बोला जी भाई जब पानी नहीं पानी कम हुआ शहर ना से रहे हाहाकार हुआ सा आसरे सड़का ठीक नहीं आती और कोई सुख सुविधा अग्निशामक नहीं आती जब ये आंकड़े जाले जब सरकार जैसा वहीं पर मंथन केरना जब इतनी भीड़ बड़ाका सा इतने लोग सी न वह पीना खाना सड़क बिजली पानी तू ही धारा पे बना सी ना नीति तू ही ए जानकारी देनी जरूरी सा जो जानकारी नहीं देला सो देश समाज का दोषी होना आस शुभल तरीके संगे और किछ जगह ना एंडा भी हेरने जैसा जै जब आसरे प्रगरणक नौठे तीन संग दुर्व्यवहार भी हो सा सो जानी बूझिए नहीं होता रोनू आए सोचा सी जासरी आमदनी ने किछ फर्क पड़ला सो आस जनगणना के तहत जैसा जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सिर्फ गोपनीय और नीति निर्माण और अनुसंधान को मेरे ते हैं यह जानकारी लिया सी बस इतनी सूचना थी आस वे सहयोग करना चाहिए धन्यवाद। तो देखा जी आस अब गलबात लानी जय डिजिटल इंडिया आकाशवाणी शिमला ना कुलवी कार्यक्रम रे आम तमाम सुनने वाले वे एक बार भी स्वागत करा सा डॉक्टर घनश्याम सोनी सादर आदर सत्कार करा सा जैसा डिजिटल इंडिया ने बारे ना गल लानी ए डिजिटल इंडिया रे बारे ना क्या आसे कदी एंडा भी सोची सका सी जे खीसे ना एक कौड़ी भी नहीं होली एक आना भी नहीं रखना सिर्फ सिर्फ एकमात्र केला स्मार्टफोन होला तो आसे आम तमाम देश दुनिया ने कई इलाके ने घूमी सका सी कई कारोबार कर सका सी देश प्रदेश सैर सपाटा कर सका सी बस किछ नहीं रोड़ी ना कोई बोझ होना ना कोई समान होना चाहे ए ढाबे ने लिया बड़े ने बड़े माल हो बस एक स्कैन करिया अपना सारा कोम हो ही जा सा ऐसा भाई डिजिटल इंडिया नवा दौर सा भारत बदलता लागा सा तो एंडा होंदा लागा दा सा झटके दिया से डब दिया से पता नहीं लगता कि बे इस सुविधा का मजा भी सा जोरदार तरीके ने चलू दस है डिजिटल इंडिया ये सर बड़ी शुभली और शानदार गल सा और आसान और सरल जिंदगी गुजर बसन के नेरे बदौलत एंडी आजादी डिजिटल इंडिया ने सा और तो कोई छ नहीं आती और भरपूर रूपा ना और खास करिया पूरे देश दुनिया ने जैसा भारत ए पहल करी सा उन्हीं तीन भी आसे धन्यवाद ही सी जहाँ से नवी तौर तरीके संगे जुड़े देसी डिजिटल इंडिया तो भारत देशा ना बखूबी ए कौम चलू दसा कि वजह नवी तकनीक और नवे आधुनिक दौरा ना जब असें पाँव रखा सी तो तरक्की की ब्यार भी हुआ सा कई चीज़ा बदली दी सी अब जंड आसरे किछ पीछे खबर आई जे भारत सरकार जैसा आसरे कुल्लू जिले ना जे दूर दराज रे इलाके थी उथड़े उथड़े जोखे अलकारा जाती चिट्ठी ले या दस दस रोज लागने ते जोड़े ना चिट्ठी पाई दियो आती तो ते माणू में भी परेशानी डॉग डुंखर कोई चे रस्ते ठीक नहीं पाँव फिसले होर स्यापा ए बता ड्रोन ने जरिए डाक झट के दे आधे घंटे ने पूजा सा और सौ डाक तोखे देनी और तोखली डाक जैसे तू इन लाए पाया जैसे झट के दे से जर्नल पोस्ट ऑफिसर मिला सा और देश

दुनियासँगे फट त्वरित रूपमा जानकारी और सन्देश जे भी जरुरी चिज असी वक्त बदलु न ए बोक्तरी मार्सा दिमागी शक्ति बढी एब प्राणा ताम जाम नहीं रहू कि चीजा शोभली सी मुहिरा इस्तेमाल किरन तकनीकरा इस्तेमाल जब सही ढंग से कर ले तो सुख सुविधा ना ब्यार आना सा, अगर तू इरा गलत इस्तेमाल के लिए तितरा नुकसान भी सा। ये तस्वीरा आई दी सी ना सभी संग है साथी 2015 री साला नौ रे डिजिटल इंडिया सफर चलू दसा 2015 नौ रे औज एक अभियान साकार हुई गो दसा एक ही दिहाड़े ना तकनीक नहीं ऐसे चलाई सकते थी वक्त लगा सा पर टाइम ना बोला बेला ना पड़ा सा जागना तो उन आसरी भारत सरकार भी जैसा धन्यवाद ही सा जय एंडी तकनीका आनी एंडी सोच आनी जे हर माणू री सोच असंगे मिली गोई बल्कि आस तुसरी एक जिंदगी री एक अच्छी बांकी आदत न शामिल हुआ था सा और डिजिटल इंडिया अभियान आरा सिर्फ एक मकसद साधना सा पूरे तमाम भारत भीतर डिजिटल रूपा न एक शक्तिशाली समाजा भीतर औज ज्ञान लाया ज्ञान री शक्ति संगे जोड़िया एक शोभली आसान सरल माली हालता भीतर एक अर्थव्यवस्था न आस एक बदलाव आने न कामयाब रहा कोसी भी देशरी माली हालत जैसा जो अर्थव्यवस्था सा सब मजबूत होली तासरी जिंदगी शोभली होनी कारोबार चलने तो औज का दौर 2026 का दौर सा नहीं तो दुआरी दे ही दे या बोला आऊं दे नुड़े बोला है ना मागुआ औज दे तुम है तो आऊं दे नू तो बटे हुए अब की पता पुराने वक्तन ते माणू सतयुग रे माणू ती तिंदरी जे बोलू सो पाथर लिखीर थी औज के वक्त न ता व्यापार करना कुण माणू आसे जान दे नहीं आती फट कर दे जैसा मोबाइल ना आदान प्रदान हुआ डे बोला पूजे स्पीकर तू ही ना आवाज आई मोबाइल ना बोला सब भाई इतरे डे मिले तितरे तो तेरे डे खाते ने काट हुए सुखा साहब ताब एक पाई पाई ना तैयार रहने उदारी ना इधर रहनी और पौरे साफ सुथरा कोम सा सुखा कोम बस मेहनत के नहीं जरूरत सा बगैर मेहनत तक ते बबरू पौकद नहीं आती बेकार आदमी आलसी आदमी लड़ाई झगड़ार आदमी और एक ही दूसरे दोष तोपड़ू वाला आदमी ते देश न बीतरे जैसे अच्छे नागरिक ने निशानी नहीं दे आती ते देश न सत्यानाश के रासी एक अच्छी सोच होनी चाहिए एक शुभली सोच होनी चाहिए जब अपना विकास आसरा तबे होना जब आसरा आस पड़ोस गढ़ा ग्रां देश दुनिया जैसे तरक्की भी आरोली है ना जी जे अपना पेट भरू सौ नहीं चलता ए जैसा कड़ी दर कड़ी जैसा सारा देशरी तंत्र चला सा एक बकरी जैसा डागड़ाती दस खा सी ए जे मिसाल सा ना इस मिसाल अपन चलाऊँ आसे तो कोई भी भूखा नहीं मारी सकता थी हुनर होने चाहिए और तंडी गल सा डिजिटल इंडिया के दौरान अगर अस आगे बढ़ना चाह सी कारोबार करना चाह सी इस आज़ादी ने जुड़ना चाह सी तो जुड़ी लिया जुड़ना पाऊद असा और किछ रोज पहले बोलो जी बड़ी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेनू आए उपाधि लेनू आए बड़े बुद्धिमान सी बुद्धिमान तो सी वक्त री ठोकर भी तो खानी पड़ा सा ना अपने आप में तपाना पड़ा सा मेहनत के नहीं पड़ा सा तब जाए सो फल मीठा हुआ सा अब पढ़ लिख दे भी न पढ़ हुआ सी सो मोबाइल चलाना नहीं अला कंप्यूटर चलाना नहीं अला तो एक ही कूनी ने पाऊ दोना सो कारोबार नहीं करी सकता थी सो एक ही उद्देश्य दुनिया संग नहीं जुड़ी सकता थी तो उम्र तय सिख यकीन नहीं होता सब किछ जैसा एक बार नहीं दुई बार नहीं दस बार बोलो बुजुर्ग तो बोलते सौ बार दुरा बोला 108 बार कोई चीज दुराई ना तो मेरे गुरु जी बोलती दूर दराज ग्रां ने पढ़ाती और दूर दराज ग्रां ना एक मिसाल थी जे राज्य रा अवार्ड भी तिना मिलू मेरचंद शर्मा जी

औषधि तेसा ऐसा दुनिया नहीं आती। सरकारी राजकीय महाविद्यालय जड़ुग्रान तेरा बड़ा योगदान सा। जे निकम्मे थी ते भी औस रिटायर हुए हेडमास्टर, बाकी तो छोड़ा। ते बोला थी 108 बार दुरा कोई भी कौम माला मन के ने 108 तो 100 जिंदगी भर नहीं बिसरी नहीं आती। तो तंडी ये गल सा जब बार बार तकनीकन बोला असर नहीं होंदा ए नवा दौर सा ए फलाना सा नहीं, धीरे धीरे कि शांत मन संगे सो सीखनी पड़ा सा। ते बे जाइया अस सीखे दोले पढ़े लिखे दोले जानकार होले देशे रे एक शुभले जागरूक नागरिक होले ते बे तरक्की होनी। एक ही माणु ने सीखिए किछे नहीं होना। अस आम तमाम जैसा डिजिटल इंडिया संगे जुड़ना सा और त्वरित रूपन आसरे कारोबार चलाने सी। एती गल बात देखा तो लो एक होर लोकगीत आसा सुनना। रितु सूद और तैयार सी तो मनोरंजन भी जरूरी सा वाला तले आज महाराज।

देखा जी, ये थी रितु सूद और नवी ताजी खबर भी आई सी। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रे पहल पेंदे औज प्रदेश ना एंटी चीटर डे रूप ना विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। एंड तीन होने सी भाई, एंड बोलू तीन आयोजित होने से आगे उरा मकसद नशे का खास करिए चिट्टे वे बढ़ते खतरे प्रति लोग जागरूक रहना सा और इस अकड़ी ना ऊना जिले ने नशे रे विरुद्ध विशेष जन जागरण अभियान चलाऊ और कार्यक्रम जिला प्रशासन अधिकारी और कर्मचारी नशे के खिलाफ शब्द लिया समाज ने चिट्टे और अन्य मादक पदार्थ रे खात्मे ने सामूहिक संकल्प प्रतिना लेना सा।

अगली खबर जी, हिमाचल प्रदेश ना सोलन जिले का राष्ट्रीय स्तरीय माँ शुणली मेला औज विधिवत रूपन माँ री पालकी री शोभा यात्रा संगे विधिवत रूपन शुरू हुआ। त्राई दिहाड़े तक चलने वाले मेले का विधिवत शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंद सिंह सुक्खू होरा तिने केरू वाला और मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे कचहरी चौक पेंदे माता री डोली रा स्वागत किने केरू और शोभा यात्रा तिने भाग लियो। ता अगली खबर जी देखा, राजधानी शिमला समेत प्रदेश के बाकी मुस्लिम समुदाय लोके औज मुहर्रम मनाऊ। ऐतिहासिक शहर नाना मुहर्रम 2 दिहाड़े तक कार्यक्रम आयोजित होने से जुड़ी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय लोग शिरकत करी। आसरे सिरमौर जिला संवाददाता दसू से देर रात शहर रे गुन्नू घाटा ना मुस्लिम समुदाय लोग औके तैयार के ताजिए दर्शन के दे पूजे और मसीह पढ़िया इस्माम हुसैन सहित करबला रे अन्य शहीद अवे तिने याद करूँ। चंबा जिले ने 2011 री जनगणना मुताबिक 250 अधिक आबादी आए सड़क सुविधा वंचित ग्राम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रे चरण 4 रे तहत शामिल करी जाना सा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे चौथे चरण रे तहत शिमला चंबा रे तीन लगभग 551 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी सा। ता देखा जी, अब सरकार पासपोर्ट आवेदन शुल्क ने बढ़ोतरी करी सा। 36 पृष्ठ आए नवे पासपोर्ट भी जारी करने तीय अब 2500 रुपये का शुल्क देना पड़ू सा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक पासपोर्ट संशोधन अधिनियम 2026 1 जुलाई ने प्रभावी होना सा। तो देखा जी, ये थी प्रदेश की ताज़ी खबर। आखिर ना सा रमेश ये राजेंद्र सिंह और जैसा रमेश कुमार वाला गाना, ये रमेश कुमार से गाणू वाला है इंदिरा ए मीठा जो लोकगीत आसा आनंद लेना लै जी सुनी लिया।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में स्वागत है सभी किसान बागवान साथियों का। किसान श्रोताओं, लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत, आपके रेडियो साथी।
1: मैं हूं जय,
0: और जय के साथ मैं हूं सुरेखा। तो जय, बता दीजिए आज क्या कुछ खास है हमारे कार्यक्रम के इस अंक में।
1: किसान साथियों, आज काम की बातों के तहत आपको जानकारी देंगे रासायनिक विधि द्वारा कीट नियंत्रण के बारे में, और रोजाना की तरह लोकगीत से करवाएंगे आपका मनोरंजन, और साथ ही साथ सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और उसका निवारण।
0: तो चलते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के सफर पे। किसान साथियों, हम सभी जानते हैं कि आपको जो है खेती बाड़ी कृषि बागवानी करते समय ना चाहते हुए भी बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, खासकर जब कीट नियंत्रण करना होता है या रोग नियंत्रण करना होता है तो मजबूरी में भी बहुत सारे रसायनों का छिड़काव अपनी फसलों पर, फलों पर, सब्जियों पर करना पड़ता है। अगर इनका जो छिड़काव है, इनका प्रयोग है, संतुलन में किया जाए और बीज बचाव करते हुए किया जाए तो इतना भी हानिकारक नहीं होगा। खासकर अगर कीट नियंत्रण की बात की जाए तो रासायनिक विधि द्वारा कीट नियंत्रण का मतलब होता है विशेष रसायनों या कीटनाशकों का उपयोग करके फसलों, घरों और बागीचों से हानिकारक कीड़ों को मारना या भगाना।
1: जी सुरेखा, आपने देखा होगा कि हमारे किसान बागवान भाई बहने कोई टमाटर लगाता है, कोई सेब की फसल लगाता है, कोई अन्य जो फलदार पौधे होते हैं, लेकिन उन पौधों को समय समय पर बहुत सारे जो रसायनों की ज़रूरत होती है ताकि जो कीट है उस पर सही तरीके से नियंत्रण किया जा सके। तो ऐसे में किसान और बागवान भाई बहनों से सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप किसी कृषि विशेषज्ञ से ही सलाह लेने के बाद जो है आप पहले रसायनों का उपयोग करें, उनकी जानकारी की और उनकी देखरेख में आप कीट नाशकों का जो आप प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक विधि इसे हम कहते हैं, लेकिन इसे हमेशा सही तरीके और सावधानी से इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
0: जी बिल्कुल जय। तो और अब बात करते हैं कि ये कीटनाशकों के प्रकार कितने होते हैं। तो किसान साथियों, कीटों को मारने और नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और इसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं कीटनाशी और धूम्रक। सबसे पहले बात करते हैं कीटनाशी प्रकार की, यानी कि जिनको हम जानते हैं इंसेक्टिसाइड्स के नाम से। तो इनका प्रयोग जो है खास तौर पर कीड़ों जैसे कि इल्लियां, टिड्डे इत्यादि, इनको मारने के लिए किया जाता है।
1: धूम्रक की बात करें किसान साथियों, तो इसे ये गैस या धुएं के रूप में होते हैं और इनका उपयोग बंद जगहों या अनाज के गोदामों में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं जहरीला चारा यानी पॉइजन, यह खाने की किसी चीज में जहर मिलाकर बनाया जाता है, इसे खाकर कीड़े या चूहे मर जाते हैं। और फिर बात करेंगे विकास नियंत्रक की, तो ये रसायन कीड़ों के अंडे देने या उनके बड़े होने की क्षमता को रोक देते हैं जिससे उनकी आबादी नहीं बढ़ती है।
0: जी, तो किसान साथियों, इन रसायनों के काम करने के तरीके के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इस तरह से है कि रसायन मुख्य रूप से तीन तरीकों से कीड़ों को खत्म करते हैं, जैसे कि स्पर्श जहर से यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइजन, जब कीटनाशक कीड़ों के शरीर को छूते हैं तो वे मर जाते हैं, उदर जहर यानी कि स्टमक पॉइजन, कीड़े जब दवा लगे पौधों की पत्तियों को खाते हैं तो जहर उनके पेट में चला जाता है, और सिस्टमेटिक पॉइजन जिसको

0: कहते हैं प्रणालीगत जहर ये पौधे के अंदर तक समा जाता है। जब कीड़ा पौधे के रस को चूसता है तो वो मर जाता है। हालांकि इन रसायनों का प्रयोग करना ही पड़ता है, लेकिन इनके प्रयोग में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है वो इस तरह से है कि कुछ सावधानियों के साथ ही इनका आप प्रयोग करें।
1: किसान साथियों, रासायनिक कीट नियंत्रण करते समय बहुत से सुरक्षा मानकों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। कीटनाशकों का छिड़काव करते समय हमेशा अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकें और पूरे कपड़े पहनें। हमेशा सरकारी कृषि विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई मात्रा का ही आप उपयोग करें। रसायनों के डिब्बों पर लिखे निर्देश का आप ध्यान से पालन करें। अपने आसपास के जल स्रोतों, कुएं, तालाब को रसायनों के दूषित होने से भी आपको बचाना जरूरी होता है।
0: जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि रासायनिक प्रदूषण से प्रकृति को बचाना लगभग असंभव ही है, हालांकि हमें इनका प्रयोग करना ही पड़ता है, तो सावधानियां रखनी पड़ेंगी। जैसे कि कीट की पहचान के बाद जो है सही कीटनाशक का आप चयन करें और अनुशंसित मात्रा यानी कि अनुमोदित मात्रा जो कि विशेषज्ञ द्वारा सुझाई गई है उसी का प्रयोग करें सही समय पर और सही दवा का प्रयोग करें। सुबह या शाम के समय छिड़काव करना ज्यादा प्रभावशाली होता है और छिड़काव करते समय आपको अपने पूरे शरीर को ढककर रखना होता है।
1: एक ही कीटनाशक का बार बार प्रयोग ना करें ताकि कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित ना हो। फसल कटाई से पहले दवा के सुरक्षित अंतराल का आप पालन करें। सुरेखा कार्यक्रम में आपने बात की रासायनिक विधि से कीट नियंत्रण की, तो अब किसान और बागवान भाई बहनों को सुनवाते हैं सोम कृष्ण की आवाज में प्यारा सा लोकगीत।

किसान साथियों, मनोरंजन के बाद अब पुनः समय है जानकारी का, जो कि प्रसारित की जाएगी बातचीत के माध्यम से। आइए सुनते हैं ये जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय है

0: दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और उसका निवारण। अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर सतीश कपूर व उनसे जानकारी हासिल करेंगे हरि कृष्ण शर्मा।
1: किसान भाइयों, देखिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच डॉक्टर सतीश कपूर जी आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद शर्मा जी।
1: किसान भाइयों, आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि दुधारू पशु में बांझपन की समस्या कैसे होती है और उसका निवारण जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जो पशुओं में बांझपन की समस्या आती है वो किन किन कारणों से आती है और इसके होने की क्या क्या संभावनाएं होती है।
2: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हरी शर्मा जी ने प्रश्न किया है बांझपन से संबंधित, तो आजकल जो है पशु में बांझपन एक बहुत ही विकृत रूप जो है वो ले रहा है। पिछले कई दशकों से हमने ये पाया है कि जैसे जैसे दुधारू पशुओं के दूध में उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे उनके प्रजनन से संबंधित समस्याएं भी आ रही हैं। इसमें जो पशुओं का बांझपन है वो काफ़ी काफ़ी गंभीर रूप जो है वो ले रहा है, और अभी प्राय ये देखने में मिला है कि जितने दुधारू पशु हैं उनमें से लगभग 10 से लेके 30% पशुओं में जो है ये बांझपन की समस्या कभी ना कभी आ रही है।
1: जी
2: तो इसमें जो जो बांझपन के कारण हैं उनको मुख्यतः हम अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो एक कारण है वो है अनुवांशिकी या
1: जी
2: जन्मजात से। तो ऐसे कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि अगर वो बछड़ी को जन्म से ही अगर उस तरह की बीमारी हो बांझपन की, जब वो बड़ी हो जाती है, जब वो हीट में आती है, तो उस स्थिति में जो कभी भी वो गर्भधारण नहीं कर पाती, और ऐसे पशुओं को रखना जो है वो किसान के हित में नहीं होता है, खासकर दूध लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: आपका कहने का मतलब डॉक्टर साहब ये है कि भी बचपन से भी ये समस्या रहती है, यानी कि जन्म जात से भी हमारे कई भी बछड़ियों को ये समस्या बनी रहती है।
2: शर्मा जी बिल्कुल, इसमें एक जो सबसे जो जो सबसे एक कॉमन चीज़ देखने में आई है उसमें क्या होता है कि जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है जिसमें कि अंडाणुओं का उत्पादन होता है, और जो अंडाणु जब वहाँ से निकलता है और जब वो उसकी प्यूबर्टल स्टेज आती है बछड़ी की, उसके बाद जब उसका कृत्रिम गर्भाधारण होता है तो और उसके बाद वो गर्भाधारण करती है, तो उस स्थिति में जो है वो अंडाणु वहाँ से नहीं निकल पाता है, और उस वजह से हम चाहे जितने मर्जी उतने उसका जो AI करते रहें या कृत्रिम गर्भाधारण या टीकाकरण करते रहें,
1: जी।
2: उस स्थिति में जो है वो जो बछड़ी होती है वो गर्भाधारण नहीं कर पाती है। उसके अलावा एक अंडाशय में पुटक यानी फॉलिकल की संख्या जो है वो कम हो, उस वजह से भी जो है वो एक बांझपन का एक कारण देखा गया है।
1: जी।
2: उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो उसका अंडाशय है या बाकी जो उसके प्रजनन के अंग हैं बछड़ी के, अगर उनका सही से विकास ना हुआ हो या खंडित विकास हुआ हो, तो उस वजह से भी जो है ये बांझपन की समस्या रहती है।
1: जी।
2: इसके बाद जो जो दूसरा मुख्य कारण है वो एक कार्यात्मक बांझपन उसको हम बोलते हैं, या उसको फंक्शनल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो पशुओं के प्रजनन के लिए जो सबसे अहम बात होती है हमारे उसके गाय के या भैंस के शरीर में हॉर्मोन्स उनकी जो वो रिलीज होते हैं और उनका बहुत अहम रोल रहता है। तो इस स्थिति में जब वो जिसको हम फंक्शनल इनफर्टिलिटी बोलते हैं या कार्यात्मक बांझपन बोलते हैं, ऐसी स्थिति में जो है वो वहाँ पे जो हॉर्मोन्स हैं उनकी प्रचुर मात्रा में उनका जो है वो शरीर में उत्पादन नहीं होता है, जिस वजह से ये बांझपन आता है। इसके अलावा इसमें जब ये वाला जो फंक्शनल इनफर्टिलिटी होती है उसमें जो है कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो हार्मोन्स पूरा रिलीज ना होने की वजह से कई बार वो साइलेंट ईस्टस आता है, मतलब जो उसका जो मद का जो क्रिया है, मद का जो चक्कर है, उसको हम सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो होता है बेसिकली कि उसमें जो किसान हैं वो बार बार उनको ये लगता है कि हम कृत्रिम गर्भाधारण तो करवा पा रहे हैं लेकिन उसकी वजह से जो है पशु नहीं टिक पा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इसमें हीट के जो लक्षण होते हैं यानी जो गर्म अवस्था होने के जो लक्षण हैं पशुओं
1: जी
2: के,
1: जी
2: उनको समझना बहुत आवश्यक है।
1: हाँ डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया कि हमारा जो किसान है, पशुपालक भाई है, वो कई बार ये शिकायत करता है कि एक बार, दो बार, तीन बार टीकाकरण उन्होंने कर दिया है
2: जी
1: लेकिन गाय जो है वो गाय में गर्भाधान नहीं टिका, तो वो किन कारणों से होता है।
2: जी इसमें एक जो जो पशुपालक भाइयों से

0: मेरा ये आग्रह रहेगा कि जब भी वो ये नोटिस करते हैं कि उनका जो पशु है वो हीट में आता है, यानी उसने वो गर्मी की अवस्था में वो आ रहा है,
1: जी
0: तो उसमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि उसका एक साइकिल का टाइम होता है।
1: हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ मेरे जहन में एक ये प्रश्न आ रहा है कि जब पशु हीट में आता है तो हीट में आने के उसके क्या क्या लक्षण रहते हैं?
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा जो प्रश्न किया शर्मा जी, इसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो जो पशु जब हीट में आता है तो उसमें जो बेसिकली जो मद चक्कर है उसका जो टाइम है वो यूजली हम ये लेते हैं कि 12 से 18 घंटे का जो समय रहता है, उस समय में कभी भी हम टीकाकरण करवाते हैं, और टीकाकरण करवाने से पहले, कृत्रिम गर्भाधान करवाने से पहले जो पशुओं के जो लक्षण हैं उसमें पहला लक्षण ये आता है कि जो गाय है या भैंस है वो बार बार रंभाती है,
1: जी
0: जिसको हम बोलना बोलते हैं।
1: जी
0: दूसरा ये रहता है कि उसके जो दूध है उसके दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है। तीसरा, वो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो हरकतें हैं वो
1: जी
0: बढ़ जाती हैं। चौथा, वो किसी दूसरे पशु के ऊपर चढ़ना शुरू

0: ये आपने बहुत अच्छा जो प्रश्न किया शर्मा जी, इसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो जो पशु जब हीट में आता है तो उसमें जो बेसिकली जो मध चक्कर है उसका जो टाइम है वो यूजली हम ये लेते हैं कि 12 से 18 घंटे का जो समय रहता है उस समय में कभी भी हम टीकाकरण करवाते हैं, और टीकाकरण करवाने से पहले, कृत्रिम गर्भाधान करवाने से पहले जो पशुओं के जो लक्षण हैं उसमें पहला लक्षण ये आता है कि जो गाय है या भैंस है वो बार बार रंभाती है,
1: जी
0: जिसको हम बोलना बोलते हैं।
1: जी
0: दूसरा ये रहता है कि उसके जो दूध है उसके दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है। तीसरा वो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो हरकतें हैं वो
1: जी
0: बढ़ जाती हैं। चौथा वो किसी दूसरे पशु के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है जो
1: जी
0: मादा पशु होती है।
1: जी
0: पांचवा उसमें ये है कि उसके जो जो योनि वाला हिस्सा होता है जहाँ से पेशाब करता है वहाँ से पशु वहाँ पे एक तार या उसको लार बोलते हैं हम,
1: जी जी
0: उसका गिरावट आता है। उसमें जो एक बिल्कुल एक सिंपल सी जो बात पशुपालकों को ध्यान में रखने की है कि जब वो लार अगर वो देखते हैं तो उस स्थिति में जब वो लार टूट, जैसे शुरू शुरू में क्या रहता है कि लार आएगी और वो टूट जाएगी,
1: जी
0: लेकिन जैसे जैसे जो उसके मध साइकिल का जो टाइम थोड़ा बढ़ता है तो उसमें जो लार है उसका जो घनत्व है उसकी जो डेंसिटी वो बढ़ जाती है, और वो बिल्कुल जैसे ऊपर से लार आती है योनि से तो लगभग आधी पूंछ तक अगर लार वो टिकी रहती है और नहीं टूटती है तो वो बिल्कुल सही समय होता है कि उस समय जो है वो उसका एआई
1: टीकाकरण
0: करवाएं,
1: हो जाना चाहिए,
0: टीकाकरण हो जाना
1: यानी कि
0: चाहिए।
1: जैसे आपने कहा कि 12 से 18 घंटे के बीच
0: जी
1: पशु को टीका लग जाना चाहिए।
0: जी जी
1: अगर कहीं दूर दराज के क्षेत्र में हमारा किसान भाई है, उसको देर से पता चलता है कि गाय उसकी हीट में है,
0: जी
1: तो अगर कई बार जैसे आपने कहा कि 12 से 18 के बीच अगर थोड़ी 2-4 घंटे लेट हो जाए तो क्या टीकाकरण करवाना चाहिए या फिर वो अगले पीरियड की इंतजारी करनी चाहिए?
0: सामान्यतः शर्मा जी ये वाला एक जो टाइम है ये बिल्कुल एक सही समय होता है गर्भाधान करवाने का,
1: जी
0: लेकिन कुछ एक पशुओं में ये देखा गया है कि ये वाला जो 12 से 18 घंटे का जो समय है इसका ये इसमें बढ़ोतरी हो रही है, और उसमें जो उसका मुख्य कारण है जो पहले मैंने जैसे आपको क्रियात्मक बांझपन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दी थी,
1: जी जी
0: तो उसमें जो हार्मोनल हमारा जो हार्मोनल का जो रोल है वो यहाँ होता है कुछ एक पशुओं में वो यहाँ तक कि वो 24 घंटे तक भी चलता है। ये एक हम एवरेज टाइम लेते हैं कि इस समय रहता है, लेकिन ये सभी पशुओं के लिए जो है वो संभव नहीं है। तो उसमें एक अगर हम एक इसमें हम किसान भाइयों को ये समझाते हैं क्योंकि अगर पशु मान लो कोई रात को अगर वो गर्मी की अवस्था में आता है
1: जी
0: और उसको हम सुबह नोटिस करते हैं उठ के तो उसको सही समय गर्भाधान करवाने का होता है शाम के समय।
1: जी
0: अगर सुबह हम पशु को देखते हैं कि इसने लार गिराई है या इसमें कोई भी उसका लक्षण आता है हीट में
1: जी
0: आने का तो उसको शाम के समय उसका जो टीकाकरण करवाएं। अगर हम शाम के समय उसको देखते हैं उसको उसके ये लक्षण को ही हम उसमें पाते हैं तो
1: जी
0: उसको अगले कल सुबह उसका गर्भाधारण करवाएं।
1: यानी कि हमारा किसान है या पशुपालक भाई जो है वो जल्दी ना करे, जैसे ही उसको दिखता है तो वो तुरंत है जो डॉक्टर के पास ना जाए, बल्कि थोड़ा समय बीतने के बाद यानी कि 8-10 घंटे के बाद वो है जो टीकाकरण
0: बिल्कुल
1: करवाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा शर्मा जी। इसके साथ एक और हम ये प्राय देखते हैं क्या होता है कि जैसे मान लो कई बार हमें पता नहीं चलता
1: जी
0: कि उसमें जो है उसमें गर्मी के लक्षण आए या नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है हम हमेशा अपने किसान भाइयों को इस तरह से जागरूक करते हैं कि जैसे मान लो अगर उन्होंने अपने पशु को गाय को या भैंस को बांधा हुआ है
1: जी
0: रात को जो है वो गोड़ में बांधा हुआ है या पशुशाला में बांधा हुआ है तो सुबह जहाँ पशु बैठा होता है जहाँ उसने गोबर किया होता है
1: जी
0: वहाँ अवश्य देखें कि वहाँ पे कोई वहाँ पे लार या वहाँ डोरी तो नहीं गिरी हुई है।
1: जी जी
0: जैसे पशु खड़ा होता है तो उसको ध्यान से देखें कि नीचे जहाँ उसने गोबर किया उसके आसपास कहीं कोई लार तो नहीं पड़ी हुई है।
1: जी
0: अगर कोई वहाँ डोर पड़ी हुई है या वहाँ कोई नाड़ू पड़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसका पशु जो है वो इसमें गर्मी की अवस्था में आ रहा हो और उसको अपने पशु के लिए निगरानी रखनी चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, मान लीजिए आपने कहा कि जैसे रात को पशु हीट में आता है तो सुबह टीकाकरण होना चाहिए, अगर सुबह वो हीट में आता है तो कोशिश करें कि शाम तक, नहीं तो दूसरे दिन तो उसका टीकाकरण होना चाहिए।
0: जी
1: मान लीजिए समय रहते डॉक्टर ना आया
0: जी
1: या समय पर टीकाकरण नहीं हुआ, तो अगली डेट वो कब मानी जाती है कि अगला टीका पशु को वो हमारा किसान कब करवाए?
0: जी इसमें जो आमतौर पे जो सामान्य पशु होते हैं जिनका जो प्रजनन प्रक्रिया स्वस्थ है और पशु का शरीर स्वस्थ है तो ऐसे पशुओं में अगर हम उसका गर्भाधान नहीं करते हैं या वो गर्भित नहीं होता है

0: उसका जो अगला साइकिल है वो 18 से 21 दिन के बीच में आता है,
1: 18 से 21 दिन के
0: 18 से 21 दिन के बीच में आता है।
1: जी
0: कुछ एक पशुओं में ये भी देखा जाता है कि जैसे मान लो आज जो है वो उसने उसको हीट के लक्षण उसमें देखे गए हैं और उसके लगभग 8-10 दिन के बाद फिर से उसमें थोड़े से लक्षण आते हैं
1: जी।
0: तो ऐसे अगर हमारे किसान भाई बहन अगर ऐसे किसी को देखते हैं, ऐसे पशु को वो ऑब्जर्व करते हैं, उसको उस समय कृत्रिम गर्भाधान ना करवाएं, टीकाकरण ना करवाएं, क्योंकि उसको हम फॉल्स हीट बोलते हैं।
1: जी
0: ऐसी स्थिति में अगर हम उसको टीकाकरण करवा देते हैं तो उससे क्या रहता है कि उसमें क्योंकि उसे पशु का जो गर्भाधारण तो नहीं होता, लेकिन जब हम बार बार टीकाकरण करवाते हैं इससे पशु का जो जो प्रजनन वाला जो सिस्टम है, जो ये इसके जो प्रजनन से संबंधित जितने
1: जी
0: अंग
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: उनके ऊपर इसका ज़रूर असर पड़ता है।
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ मुझे एक प्रश्न आपसे जानना था कि कुछ एक किसानों की ये शिकायत रहती है कि टीका बार बार करने से कहते इन्फेक्शन हो गया। ये इन्फेक्शन पशुओं में कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसके कारण हैं?
0: शर्मा जी, इसमें क्या रहता है बेसिकली कि आमतौर पे अगर कोई कोई एक स्वस्थ पशु है और उसको अगर 3 दफ़ा अगर उसको टीका लगता है और
1: जी
0: 3 दफ़ा तक हम ये मान के चलते हैं कि अगर 3 दफ़ा तक अगर वो नहीं टिकता है यानी वो गर्भाधान नहीं करता है तो उसको हम वांछवन की श्रेणी में लेते हैं
1: जी
0: तीन
1: जी
0: के बाद।
1: जी
0: इसका एक एक इसके पीछे जो एक थ्योरी है वो ये है बेसिकली कि जो हम जब भी टीकाकरण करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जितने हमने पशुओं को टीकाकरण किया है उनका लगभग 40 से 50% जो है वो पशु टिकने चाहिए यानी उनको गर्भधारण करना चाहिए,
1: इनकी टिकने की संभावना पूरी
0: टिकने की
1: रहती है।
0: संभावना रहती है।
1: जी
0: लेकिन उसके साथ पशु का स्वस्थ होना, पशु का देखरेख किसान भाई द्वारा करना और बाकी सारी सामान्य स्थिति रहती है तो उसमें हम 40 से 50% उनका जो है वो सक्सेस रेट मान के चलते हैं।
1: जी
0: बाई चांस कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक पशु को, जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि 1 बार 2 बार 3 बार हमने टीकाकरण कर दिया,
1: जी
0: ऐसी स्थिति में एक ये संभावना रहती है कि अगर पशु नहीं टिकता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो संक्रमण या उसकी इन्फेक्शन की संभावना रहती है।
1: जी
0: तो हमेशा इसमें जो जो टीकाकरण करवाने से पहले जो हमारे टीकाकरण करने वाले जो हमारे कर्मी हैं
1: जी
0: कर्मचारी हैं उन वो एक ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है जो उसके जब जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि उसका जो एक डोर आती है
1: जी
0: गर्मी की अवस्था में तो उस डोर के रंग को देख के पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई संक्रमण है या नहीं,
1: जी जी
0: प्राइम एफिस हम उसी से वहाँ देख लेते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जब भी किसान भाई अगर कहीं अपने पशु को लेके जाएं और ख़ासकर वो पशु जो टिक ना रहा हो,
1: जी
0: एक टीके से ना टिका हो, दूसरे टीके से ना टिका हो, तो उस स्थिति में अगर अगर वो किसी पशु चिकित्सक से है या जो टीका करने वाला कर्मचारी है उससे ये मतलब इस तरह से वो बोल सकते हैं कि एक बार इसको एक बार देख लो आप, अगर उसके कहीं लगता है कि उसमें इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में जो उसका इलाज करना चाहिए और इलाज किया जाता है
1: जी
0: और उसके बाद कुछ समय के लिए अगर किसी पशु में इन्फेक्शन हो गया है तो एटलीस्ट उसको 2 या 3 उसकी हीट को मिस करके उसके बाद उसका जो है वो हम टीकाकरण करवाएं तो ऐसी स्थिति में जो है उसको गर्भधारण करने की जो संभावना वो अधिक रहती है।
1: जी यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद भी पशु में दोबारा गर्भाधान हो सकता
0: हो
1: है।
0: सकता है, हो सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि वीर्य के द्वारा, अगर मान लो कि कोई बैल है, अगर हम किसी अपने गाय या भैंस को किसी बैल के पास या भैंसे के पास लेके जाते हैं और वो बैल जो है वो पहले से संक्रमित हो,
1: जी
0: उसको पहले इन्फेक्शन हुआ हो, उस स्थिति में वो जितनी भी गायों या भैंसों को जो है वो उसको गर्भधारण करने की कोशिश करेगा तो उस स्थिति में जो है वो उतने पशुओं को इन्फेक्शन फैलता जाएगा।
1: जी
0: इसीलिए हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप जो अपने पशुओं को बजाय के नेचुरल सर्विस से, बजाय के बैल या भैंसे के पास ले जाने के, उसको जो आप कृत्रिम गर्भधारण करवाएं क्योंकि उससे जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं
1: वो कम हो जाएगी।
0: जो जो एक जो इन्फेक्ट जो हमारे जो कंटेजियस इन्फेक्शंस होते हैं
1: जी
0: जिसमें कि एक ब्रुसेला है, जिसमें कि एक ट्राइकोमोनास है, जिसमें एक विब्रियोसिस है, इवन इसमें आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है,
1: जी
0: पैरा ट्यूबरक्लोसिस है, इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं जो कीटाणुओं से या प्रोटोजोआ से, परजीवी से या फिर विषाणुओं से यानी वायरसेस से होते हैं, उन इन्फेक्शंस को हम चेक कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि

0: जब हमारे पशु का टीकाकरण होता है और टीकाकरण से पहले या टीकाकरण के बाद हमारे किसान भाइयों को अपने पशु की किस तरह से देख रेख रखनी है। कई बार ये भी माना जाता है कि गांव में ये कहावत होती है कि जब पशु हीट में होता है तो उसको पानी कम पिलाना चाहिए या उसको घास नॉर्मल देना चाहिए। इस तरह की कई तरह के सवाल हमारे किसान भाइयों के जहन में रहते हैं।
1: जी शर्मा जी, मैं आप थोड़ा ये बताना चाहूँगा अपने किसान भाई बहनों को कि जो बांझपन की जो स्थिति हमने देखी है उसमें से लगभग 60% बांझपन जो है वो जो प्रबंधन के कारण होता है।
0: जी
1: प्रबंधन में जो है मुख्यतः पशु को कैसे रखना है, उसका खान पान की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसको समय समय पर जो है वो कृत्रिम जो हमारे कृमि होते हैं पेट में, जो पशुओं के पेट में कृमि होते हैं
0: जी
1: या पशुओं के शरीर के ऊपर जो चिचट पिथर इस तरह से जो कीटाणु या जो
0: बाहरी परजीवी जो
1: बाहरी
0: आते हैं।
1: परजीवी जो होते हैं उनके नाश के लिए समय समय पर हमें दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम एक हमारी गाय को या भैंस को नियमित तौर पे इन परजीवियों के लिए दवाई जो है वो उनके निराकरण के लिए हम दवाई देते
0: जी
1: रहेंगे,
0: जी
1: उससे उसका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल सही रहेगा।
0: जी
1: उसके साथ जो घास देना है, जो दाना देना है, वो भी एक संतुलित मात्रा में पशु को चाहिए।
0: जी
1: आमतौर पे हम क्या करते हैं, जो ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है हमारे गांव में, कि जैसे हम टीकाकरण करवाते हैं तो उसके बाद पशु का दाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं।
0: जी जी
1: आमतौर पे ये धारणा है कि अगर हम दाना देंगे तो उससे जो है पशु उसकी जो हीट लंबी रहेगी
0: जी
1: या वो टिकेगा नहीं।
0: जी
1: ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। इसके विपरीत जब भी कृत्रिम गर्भाधारण करवाते हैं उस स्थिति में गाय या भैंस को गर्भधारण करने के लिए और उसके बाद एक बार गर्भधारण हो जाता है उसके बाद बच्चे को पेट में पालने के लिए और ज़्यादा जो है वो आपके न्यूट्रिशन की या खुराक की आवश्यकता होती
0: जी
1: है।
0: यानी कि खुराक उसको खिलानी है नॉर्मली जैसे
1: उसको
0: देते हैं।
1: बिल्कुल उसको नॉर्मल खुराक खिलानी है। और जब ये कंफर्म हो जाता है, जैसे जब हम ये नॉर्मली अपने जो किसान भाइयों को हम ये बोलते हैं कि जैसे आपने टीकाकरण करवाया है, टीकाकरण करवाने से 2.5 से 3 महीने के बाद
0: जी
1: उसका जो है वो जरूर चेक उसको करवा लें और जैसे कंफर्म हो जाता है कि ये प्रेग्नेंट है तो
0: जी
1: उसमें और अधिक हमें उसको जो खुराक की आवश्यकता पड़ती है,
0: उसको बढ़ाना है।
1: बढ़ाने की
0: जी
1: उसको आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ जो खनिज मिश्रण है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है पशुओं के बांझपन के निवारण में। तो
0: जी
1: उसको बिल्कुल एक जो आप दाना देते हैं उसको चारा देते हैं उसमें खनिज मिश्रण अवश्य डालें जिससे बांझपन का जो है वो उसको काफ़ी कम किया जा सके और पशु से उसकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके।
0: जी तो डॉक्टर सतीश कपूर जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी दी दुधारू पशुओं में बांझपन तथा निवारण के बारे में। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद शर्मा।
2: किसान साथियों, दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और उसके निवारण के बारे में आपने विस्तार से जाना डॉक्टर सतीश कपूर से, जिनसे बातचीत कर रहे थे हरिकृष्ण शर्मा। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ, जो कि है एक प्यारा सा लोकगीत जिसे गाया है
3: यशोदा देवी ने।

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत के साथ समय संपन्न हो चला है कार्यक्रम कृषि जगत का। लेकिन जाने से पहले आपको बताकर जाएंगे कल शाम 7:10 पर प्रसारित होने वाले कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है।
1: किसान साथियों, कल काम की बातों के तहत कार्यक्रम में बात करेंगे पॉली हाउस में बीज रहित खीरे की खेती। इस विषय पर रोजाना की तरह लोकगीत से करवाएंगे आपका मनोरंजन और साथ ही साथ सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा जंगल की आग से पर्यावरण प्रदूषण एक चेतावनी।
0: तो किसान साथियों, सुनना ना भूले कल का कृषि जगत कार्यक्रम। बहरहाल ये कार्यक्रम संपन्न करने की अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी किसान बागवान भाई बहन सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 776 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे सम्मान से जी

0: फन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
4: हाँ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पंजाब के राज्यपाल से भेंट, दोनों राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाहें फैलाने का लगाया आरोप। प्रदेश में एंटी चिट्टा दिवस के मौके पर हुए कई जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को दिलाई गई नशा विरोधी शपथ। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज से शुरू। और शिमला जिला के रामपुर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लंबित व कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में उसका 7.19% का वैधानिक हिस्सा प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण की आवश्यकता का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई दशक पहले बना वर्तमान हिमाचल भवन अब राज्य के लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से संबंधित लंबित पड़ी देनदारियों के जल्द निपटारे को लेकर भी विचार विमर्श किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार का अधिकार व पारदर्शिता, काम का भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान हैं और इसके अलावा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जी राम जी योजना 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के नाम पर झूठ बोलकर प्रदेश के हितों को दांव पर लगा रही है। जयराम ठाकुर ने सरकार को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी है। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी निवारण दिवस को एंटी चिट्टा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा में बताया कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष से एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे जैसी सामाजिक बुराई के नाश के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। इस दौरान एंटी चिट्टा जागरूकता रैली को भी रवाना किया गया। इस बीच नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शिमला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और नशा तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
1: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे को लेकर विशेष अभियान चलाया है और वाकाथोन के जरिए, बहुत सारे सेमिनार्स के जरिए और यहाँ तक कि कानून भी जो है बदला गया है हिमाचल, और इसको बड़े सख्ती से किया गया है। पूरे प्रदेश के पंचायतों में मैपिंग की गई है कि कहाँ पर इसका ज्यादा मेनेंस है। इसमें जो है बहुत सारे कदम उठाए गए, खासकर जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिसमें पुलिस विभाग के लोग भी शामिल पाए गए, उन सबके ऊपर कड़ा जो है संज्ञान लेकर कड़े फैसले लिए गए, उनको नौकरियों से भी निकाला गया है। तो हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर सरकार चिंतित है और खाली चिंता ही नहीं बल्कि इसको कैसे, मतलब इस मेनेंस को दूर किया जाए, उसके लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
0: एक

0: अन्य कार्यक्रम में कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इस अभियान में उपायुक्तों की परफॉर्मेंस भी आंकी जाएगी।
1: दो चीज़ें की जा रही हैं, एक जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी हैं उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस से नंबर दिए जाएंगे।
0: इस अवसर पर प्रदेश के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने परंपरा के अनुसार मां शूलिनी की पालकी का विधिवत स्वागत किया और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। धनीराम शांडिल ने कहा कि मां शूलिनी को समर्पित ये उत्सव समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है। शूलिनी मेले के सफल आयोजन के लिए सोलन जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस मेले के दौरान होने वाली सांस्कृतिक संध्याएं, खेल व अन्य गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शिमला जिले में रामपुर क्षेत्र के उरमड़ में आज एक पिकअप के गहरी खाई में गिर जाने से मां और बेटे सहित 6 लोगों की मृत्यु हो गई। शिमला पुलिस ने इस हादसे की पुष्टि की है। मृतक आनी तहसील के कवाणू व रामपुर तहसील के छलटा, पाठ और शरनाल गांव से संबंधित बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट परियोजना की भूमि अधिग्रहण का करीब 85% कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी भूमि अधिग्रहण अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। प्रशासन द्वारा अब जल्द ही अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांगड़ा पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि प्रभावित परिवारों के राहत व पुनर्वास की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पुनर्वास व पुनर्स्थापन सहित अब तक करीब 2,200 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रभावितों को वितरित की गई है।
2: अभी तक बजट इंक्लूडिंग रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का है, वो जो वन टाइम सेटलमेंट में अभी तक हुआ है ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ के आसपास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और जो अलग कैटेगरीज में फैमिलीज आती हैं, जैसे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं, वो 942 के आसपास की संख्या जो थी वो पहले थी, अब उसमें जो है वो कुछ काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, उसको लैंड एक्विजिशन कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर R&R के लेवल पे जो है देखा जाना है, और जब वो क्लेम्स सारे सेटल हो जाएंगे उसके बाद एक्चुअल फिगर जो है वो उसके हिसाब से आगे जो कंपनसेशन का है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा।
0: प्रदेश भर में आगामी रविवार 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान में 5 वर्ष तक की आयु के 5,94,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इस अभियान के लिए प्रदेश में 4,753 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पिछले कल कसौली के नेरीकला में मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा पर मोर्चा की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा कि महिलाएं सरकार के वादों और वास्तविकता के बीच का अंतर भली भांति समझ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना को कसौली विधानसभा क्षेत्र की 5 पंचायतों की महिलाओं तक ही सीमित कर दिया है और इलाके की शेष पंचायतों की महिलाओं को इससे वंचित रखा जा रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज शिमला जिले के सुन्नी में पौधरोपण किया गया। पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मातृ सम्मान का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और दोपहर बाद से कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। राजधानी शिमला व आसपास के

0: क्षेत्रों में भी व्यापक वर्षा हुई है। इसके अलावा राज्य के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस वर्षा से किसानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पंजाब के राज्यपाल से भेंट, दोनों राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर विकसित भारत जीराम जी योजना को लेकर अफवाहें फैलाने का लगाया आरोप। प्रदेश में एंटी चिट्टा दिवस के मौके पर हुए कई जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को दिलाई गई नशा विरोधी शपथ। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज से शुरू। और शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश हैं रोजगार समाचार। जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरा स्टाफ के विभिन्न पदों को भरने हेतु अंशकालिक अथवा घंटे के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से है: पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद और मल्टीपर्पज वर्कर के 25 पद, अर्थात कुल 40 पदों को भरने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए: जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरा स्टाफ के विभिन्न पदों को भरने हेतु अंशकालिक अथवा घंटे के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से है: पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद और मल्टीपर्पज वर्कर के 25 पद, अर्थात कुल 40 पदों को भरने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों में अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
2: थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।

हमारे इश्क के बदले हमारी जान को ही ले लिया उसने, हमारी खुशियों का सारा जहां ही मानो ले लिया उसने। हम भीगी पलकों से ज़मीन को ताकते रह गए, हमारे हिस्से का सारा आसमान ले लिया उसने। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला पर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम भूले बिसरे गीत में। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मैरम दीपक शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना अपने परिवार का, समाज व पर्यावरण का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। आज के प्रोग्राम की पहली पेशकश अमर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़।

टूट कर आज बिखर जाने दे हमको, गहरे नदिया में उतर जाने दे हमको। दर्द के कांटे चुभते हैं रोज रातों को, आज ये फैसला यूं ही कर जाने दे हमको। छोटी छोटी फिल्में आई सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की धुन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

कैसी लत लगी है तुम्हारे दीदार की, बात करो तो दिल नहीं भरता, ना करो तो दिल नहीं लगता। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत, रेडियो मैरम दीपक शर्मा के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली पेशकश लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में, फिल्म का नाम जान।

0: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हम आपकी हर चीज़ से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात पे एतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो, हम जिंदगी भर आपका इंतज़ार कर लेंगे। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र, प्रोग्राम चल रहा है भूले बिसरे गीत। मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम बसंत बहार, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।

केंद्र 8:30 हुए हैं, वक्त है फिल्म संगीत का। टूट कर बिखर जाने थे हमको, गहरी दरिया में उतर जाने थे हमको, दर्द के कांटे यूं ही चुभते हैं रोज रातों को, आज ये फैसला कर जाने थे हमको। इतिहास फिल्म में अनुराधा पौडवाल और साथियों को सुनते हैं।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9। कीजिए बस कुछ ही क्षणों का इंतज़ार।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका

0: का है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8

0: आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपये का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हज़रत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। वक्त तो चला है प्रोग्राम एक फिल्म से का। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका एडमिरल दीपक शर्मा। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 1973 में प्रदर्शित विजय आनंद द्वारा निर्देशित एक रोमांचक हिंदी फिल्म के बारे में जिसका नाम है ब्लैकमेल। जी दोस्तों, 1973 में प्रदर्शित इस फिल्म के निर्देशक, जैसा कि हमने आपको बताया, विजय आनंद थे और इस फिल्म के लेखक थे विजय आनंद और विनोद कुमार, और फिल्म का निर्माण किया था विनोद दोषी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे धर्मेंद्र, राखी, शत्रुघ्न सिन्हा, मदनपुरी, इफ्तिखार, कमल कपूर, जगदीश राज और केशव राणा। फिल्म की कहानी क्या कहती है और इसके गीत संगीत किस तरह से दिया गया था, बात करेंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नाता जोड़ें।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जानें।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जी दोस्तों, प्रोग्राम एक फिल्म से मैं आज हम बात कर रहे हैं फिल्म ब्लैकमेल के बारे में। और कहानी की बात करें तो प्रोफेसर खुराना, जो कि एक सनकी वैज्ञानिक होते हैं, सूर्य की किरणों से बिजली उत्पादन का एक नुस्खा खोज कर निकालते हैं। ये खोज उन्हें बहुत मशहूर कर देती है और उनके नुस्खे की काफ़ी मांग भी बढ़ जाती है। परंतु क्षेत्रीय उद्योगपति मिस्टर मेहता को इससे नुकसान और संभवतः दिवालिया होने का भय सताने लगता है। मेहता और उनका सहयोगी जीवन को, जो कि उनकी बेटी आशा का प्रेमी भी है, एक योजना बनाते हैं कि अगर आशा की शादी प्रोफेसर खुराना के भतीजे कैलाश से करा दी जाए तो उनकी सारी संपत्ति का वारिस है, तो वो नुस्खा हासिल करके दिवालिया होने से बचा जा सकता है। लेकिन इसमें इकलौती समस्या ये होती है कि आशा इसमें कोई सहयोग नहीं करती। तब जीवन उससे विवाह करने से इनकार कर यूरोप में बसने के लिए चला जाता है। अब आशा कैलाश से शादी के लिए राजी हो जाती है, जो उससे बेइंतहा प्यार करता है। विवाह संपन्न होता है, लेकिन शादी की पहली रात से ही उनके बीच गलत फहमियाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि कैलाश महसूस करता है कि आशा उससे कुछ छिपा रही है। चुपके से आधी रात को किसी से मिलने जाती है। इसके बाद क्या वो नुस्खा चोरी हो जाएगा, आशा अपने पिता जीवन की योजना में शामिल होती है, या फिर आधी रात को उसे कौन मिलता है, ये सारी कहानी इस फिल्म की होती है और इसी को ब्लैकमेलिंग का नाम दिया जाता है।

दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के गीत गाए थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, और इस फिल्म के जो गीत लिखे थे राजेंद्र किशन ने, और उन्हें दिलकश संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। आपको बता दें अब से कुछ ही देर बाद यानी 9:30 पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aarfmshimla@gmail.com। और आज हम फिल्में लेकर आए हैं, वो फिल्में हैं अंदाज, राजा हिंदुस्तानी, जान और अग्नि साक्षी। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश

समय मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मैराम दीपक शर्मा। दोस्तों कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है aarfmshimla@gmail.com। और आज जो हम फिल्में लेकर आए हैं वो आपको बता दें, फिल्में हैं अंदाज, नई वाली, राजा हिंदुस्तानी, जान और अग्नि साक्षी। इन फिल्मों में से कोई सा भी सुनने के लिए आपको अभी इसी वक्त हमें ईमेल करना है। हमारा ईमेल आईडी है aarfmshimla@gmail.com। पहली फरमाइश में देख रहा हूं, ये फरमाइश करने वाले हैं सागर आकांक्षा, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मजनू कटीला दिल्ली से हैं, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक की ये फरमाइश मिली है। गुरैया जलंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर, मेरठ बाईपास से राधिका कौर और आरती कौर, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी। और अगली फरमाइश है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेहरा, जहां आजादा कर लक्सर है, दुआ से फरमाइश कर रहे हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अबान अब्बासी, चखुंटी बुलंदशहर से फरमाइश कर रहे हैं। कृष्णाबाग दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना की फरमाइश मिली है। अगली फरमाइश हमें मिली है मजनू का टीला से, इन्होंने दोबारा फरमाइश की है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश की ये फरमाइश हमें मिली है। नेक्स्ट जो फरमाइश में देख रहा हूँ, ये फरमाइश करने वाले हैं टिक्कर रोडू से, हमें फरमाइश कर रहे हैं सतीश नरसेठ, पूजा नरसेठ और इनके पूरे परिवार के सदस्य। नेक्स्ट जो फरमाइश में देख रहा हूँ, ये फरमाइश हमें भेजने वाले हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मे शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं। गुलाम साबिर, रही मेहराज जहां ने, ताज मोहम्मद अंसारी ने भी फरमाइश की है। चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली डोमीन, पथिक डोम की फरमाइश मिली है। डोंडी लोहारा से प्रभा जमोरिया, अनुशी जमोरिया, पूजा डॉली जमोरिया की फरमाइश मिली है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की फरमाइश मिली है। नेक्स्ट फरमाइश हमें मिली है संजय ढिंगिया की, इनके साथ है नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, बागपत यूपी से इन्होंने फरमाइश की है। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय नारायणपुर बामापट्टी बलिया से हैं, इनके साथ हैं गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। नेक्स्ट जो फरमाइश में देख रहा हूँ, ये हमें फरमाइश भेजने वाले हैं रामपुर शिमला से, हमें फरमाइश कर रहे हैं कुसुम, नीलम और भावना और इनके साथ कोनिका की भी फरमाइश में मिली है। आप सभी की फरमाइश पर हम भेज रहे हैं फिल्म अंदाज से ये प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 9:30 हो चुके हैं और ये वक्त है प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुनकर। इस

जी दोस्तों, आपको हमसे और हमें आपको बिल्कुल प्यार हो गया है और आपकी फरमाइशों के माध्यम से हम बखूबी जान पा रहे हैं कि हम आपसे और आप हमसे कितना प्यार करते हैं। बहरहाल अगली जो फरमाइश हमें मिली है वो है सोलन से, हमें फरमाइश कर रही हैं सीता, गीता, सोनिका और मोनिका की ये फरमाइश मिली है। कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं राज हिंदुस्तानी फिल्म का, बेहद शुक्रिया दोस्त आपका सभी का ईमेल करने के लिए। अगली फरमाइश ये मिली इंदौर एमपी से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी की ये फरमाइश मिली है। योगेंद्र नायक की भी हमें फरमाइश मिली है, इनके साथ है गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक, कासगंज यूपी से फरमाइश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ, अजीम खान, अजहर खान, इशरत जहाँ, नवाब खान वारली मुंबई से हमें फरमाइश कर रहे हैं। अहमद शाह जहाँ बेगम, मरियम जैनब, इरशाद अहमद शाह की फरमाइश मिली है बिलराम कस्बा से। अगली जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं सरावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुराना की फरमाइश मिली है। नेक्स्ट जो फरमाइश हमें मिली है, ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं मीरा देवी और इनके साथ हैं गुन्नू देवी, ये रोहडू से हमें फरमाइश कर रहे हैं कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ सनावद ग्राम जुनोपानी एमपी से, खुशी, खुशबू, खुशमीत, खुशदीप, खुशमिता, एकांश, आशा, इमली, वंदना बटोले की फरमाइश मिली है। अगली फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये हमें फरमाइश जो भेज रहे हैं योगेश शर्मा और इनके साथ है अशोक शर्मा, नलग और बाग से इन्होंने फरमाइश की है कोई सा गीत इन्होंने सुनना चाहा है। अगली फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश करने वाले हैं छुपाड़ी रोडू से, एल आर गुंजेटा, जमिंदा गुंजेटा, भजन गुंजेटा, ताराचंद गुंजेटा।

अनुज और मुकुल गुंजेटा की फरमाइश मिली है। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद उमेश वर्मा, राजेंद्र और मनहरण वर्मा की फरमाइश मिली है। गांव टपरोक तहसील सुनने से फरमाइश कर रहे हैं राजू, आशा, स्नेहा, बॉबी, हैप्पी, अनन्या, अंश, ध्रुव, अनिरुद्ध शर्मा, रूहानी शर्मा, प्रीति शर्मा, मिवान शर्मा और भव्य शर्मा की फरमाइश मिली है। और सूर्यांश शर्मा भी इनके साथ है, कोई सा भी गीत इन्होंने सुनना चाहा है। अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत की फरमाइश मिली है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, कोई सा भी गीत इन्होंने सुनना चाहा है। अगली जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं किरण वर्मा और अर्जुन वर्मा की, ये फरमाइश मिली है टूटू शिमला से, ये फरमाइश कर रहे हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू, चंपा साहू की फरमाइश मिली है। के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूला, राजक, मुरली क्षत्रिय भाटापारा से फरमाइश कर रहे हैं। पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता की फरमाइश मिली है। प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, राजकुमार डूडी, गाँव फ्रांसी, हिसार की फरमाइश कर रहे हैं। नर्मदा पाक मंगल वेदा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नजीम पटेल, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी से प्यारा सा गीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी दोस्तों, प्रोग्राम अंतिम पड़ाव पर हैं। अब जो हमें फरमाइश मिली है वो है सीताराम हीरालाल बड़ोले, साहिल सुमन बड़ोले, विशाल हरिओम भावना बड़ोले, कालू सिंह बड़ोले की भी फरमाइश हमें मिली है। रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से इनका पूरा परिवार सुन रहा है। और संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता भाकरे नांदेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश कर रहे हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह लोहगढ़ ठाकुर वाला से फरमाइश कर रहे हैं। कोई सा भी गीत इन्होंने सुनना चाहा है। नेक्स्ट जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश हमें मिल रही है मीना पॉल और शिल्पा पॉल की फरमाइश मिली है, और अर्की सोलन से इन्होंने फरमाइश की है। कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश हमें भेजने वाले हैं बिट्टू, रीटा, रजत और मयंक भाटिया, झज्जर हरियाणा से फरमाइश कर रहे हैं। अगली जो फरमाइश हमें मिली है, ये फरमाइश करने वाले हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष बेंगलुरु से हैं। कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना की फरमाइश मिली है। रोहिणी दले, सविता दले, अनिकेत दले, अशोक दले, कुमार गली श्रीरामपुर से इनके साथ, ऋषिकेश, जीविका पुनावले पुणे से, अजय सोनवने, करिश्मा और अविका की फरमाइश मिली है। नेक्स्ट फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश करने वाले हैं इरशाद अहमद शाह, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की भी हमें फरमाइश मिली है। जिला लातूर से हैं उस्मान शेख, फौजी सारा, बानो शेख, करिश्मा शेख की भी हमें फरमाइश मिली है। कोई सा भी गीत इन्होंने सुनना चाहा है। सरिता राव, सुनील राव और प्रिया राव की भी हमें फरमाइश मिली है। ये फरमाइश हम कर रहे हैं संजौली शिमला से। अगली जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं कैलाश दीपक फूलमाली, दीपेश

जी दोस्त, अनिल शर्मा, इंदु शर्मा, लवदीप शर्मा, नंदी, नैन्सी शर्मा, गुड्डू शर्मा, सुनाम पंजाब से फरमाइश कर रहे हैं, और कोटखाई शिमला से हमें नेहा, राजन और श्वेता ने भी फरमाइश की थी। आप सभी दोस्तों का तो बेहद शुक्रिया जो ईमेल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी धन्यवाद जो ईमेल नहीं कर पाए लेकिन फिर भी बने हुए हैं। आप यूँ ही आकाशवाणी FM शिमला के साथ बने रहिए। फिलहाल प्रोग्राम इतना ही, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: गाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मत रहो दूर अपनों से इतना कि वक्त के फैसले पर अफसोस हो जाए। कल ना जाने कैसी मुलाकात हो हमारी, आप रोएं लिपट कर हमसे और हम खामोश हो जाएं। मौसीकी से भरपूर गजलों के इस कार्यक्रम में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं आपका रेडियो मैडम दीपक शर्मा। प्रोग्राम की पहली पेशकश चंदन दास की आवाज में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हमें किसी से मोहब्बत नहीं तुम्हारे सिवा, हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं तुम्हारे सिवा, जो हमारे दिल और ज़िंदगी पर राज करे, किसी को इतनी इजाज़त भी नहीं सिर्फ तुम्हारे सिवा। अगली आवाज़ गुलाम अली की, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरों की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम। धड़कता है ये दिल बस आप ही की आरजू में, पर कैसे न कहूँ कि हमारी जान हो तुम।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम के पहली पेशकश चीने की रहा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में आनंद बख्शी की शब्द रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, फूल मुरझाते हैं तो बहार रूठ जाती है, जब गुल खिलते हैं तो चमन मुस्कुराता है। ज़िंदगी के बाग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से मायूसे के पत्ते झड़ जाते हैं और उम्मीद के फूल खिल जाते हैं। इसी से जज्बे को सलाम करता है नगमा, पेश खिदमत है खिलते हैं गुल यहाँ। शर्मीली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म से, आनंद बख्शी के बोल आर डी बर्मन के प्यारे से धन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दिल उनके लिए ही मचलता है, ठोकर खाता है और फिर संभलता है। किसी ने इस कदर कब्जा कर लिया है दिल पर, दिल हमारा है पर उन्हीं के लिए धड़कता है।

107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला के अंदर। रात्रि के 11 बजने को है। समाचारों का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, पहले हिंदी में और फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। कीजिए बस कुछ ही क्षणों का इंतजार।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।